0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

0: किया था और वो फरेब कर रहे थे तो तुम उनके पास तो न थे।
1: वमा अक्सर الناس ولو حرصت بمؤمنين
0: और बहुत से आदमी गो तुम कितनी ही ख्वाहिश करो ईमान लाने वाले नहीं हैं।
1: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
0: और तुम उनसे इस खैर ख्वाही का कुछ सिला भी तो नहीं मांगते, ये कुरान और कुछ नहीं तमाम आलम के लिए नसीहत है।
1: وكأ

खुदा वही तो है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान जैसा कि तुम देखते हो इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जा ठहरा और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक एक मियाद मुय्यन तक गर्दिश कर रहा है, वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो।

और वो वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।

सूदमंद पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है।

उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही उनकी तरफ से कह दो कि खुदा। फिर उनसे कहो कि तुमने खुदा को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। ये भी पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर है, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला उन लोगों ने जिनको खुदा का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने खुदा की सी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनको मखलूकात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि खुदा ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वो यकता और जबरदस्त है।

उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और फायदा पहुंचाने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूछते रहे हैं उनके पूछने से हमको बंद कर दो, तो अच्छा कोई खुली दलील लाओ यानी मौजजा दिखाओ।

वो उसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके पीछे सख्त अजाब होगा।

مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: 6, बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, हम फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं भी बढ़ूंगा डॉक्टर दिलावर हुसैन की तरफ। डॉक्टर साहब, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं?
2: जी सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो डिपार्टमेंट जूलॉजी है अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UC भी जो काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा BS जूलॉजी प्रोग्राम चल रहा है, 4 ईयर्स का जो प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा MPhil जूलॉजी का 2 ईयर का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है हमारा, उसकी इवनिंग की अंदर क्लासेज हैं। उसके अलावा हमने जो PhD के लिए भी वर्किंग पेपर जो तैयार किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हम HEC को भेजेंगे फॉर द अप्रूवल ऑफ PhD इन जूलॉजी। एडिशनली हमने 1-2 डिग्री प्रोग्राम उनके ऊपर और वर्किंग जो है वो की हुई है, फॉर एग्जांपल BS इन पब्लिक हेल्थ के ऊपर एंड MS इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि आपको पता, जैसे मैडम भी कह रही थी, आगे ये जो ज़माना आ रहा है, जो करंटली हम फेसिंग कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे UN ने अपने गोल सेट किए हैं, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो MS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो अपनी वर्किंग है वो मुकम्मल की हुई है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसको किसी फॉर्म से, मे बी जूलॉजी और फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट से, इसको भी ऑफर करेंगे इंशाल्लाह।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नागरा। इसी सवाल को आपकी तरफ बढ़ाऊँगा, आप भी बताएंगी मजीद कुछ प्रोग्राम्स की, मजीद आप इलूसीडेट करेंगी, इनको मजीद फैलाएंगी?
3: जी सर, जैसे BS जूलॉजी प्रोग्राम की बात हुई है, तो ये हमारा 8 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को एनिमल बिहेवियर, एनिमल डाइवर्सिटी, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, अलॉन्ग विद दैट माइक्रोबायोलॉजी एंड डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, जिसमें इकोनॉमिक जूलॉजी भी आ जाती है, इसमें इन्वायरमेंटल साइंसेज भी आ जाती है, वाइल्ड लाइफ भी है और इकोलॉजी है। तो ये सब प्रोग्राम्स, ये सब सब्जेक्ट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिकली एनिमल्स। लेकिन उसमें मैं ये ऐड करती चलूँ कि एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेटा, तो हम एज रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हम ह्यूमन बींग्स को ही डिस्कस करते हैं। और जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे फिजियोलॉजी को पर्टिकुलरली अगर ले लें, तो हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी है, एक्सक्रीटरी, वट एवर, जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारा जो रोल है, रोल मॉडल है उसके अंदर, वो हम एक ह्यूमन बींग के ही सारे सिस्टम को डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दैट MPhil जो हमारा प्रोग्राम इवनिंग में चल रहा है, तो उसके अंदर जो हमारे स्पेशलाइजेशन वाले प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर हो रहे हैं, जिसमें बच्चे रिसर्च तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका कोर्स वर्क है वो 1-2 सेमेस्टर्स में दे हैव टू कम्प्लीट दैट। और उस कोर्स वर्क में उनके जैसे एपिडेमियोलॉजी है, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल साइंसेस है, एडवांस कैंसर बायोलॉजी है, एडवांस माइक्रोबायोलॉजी है एंड डिफरेंट अदर टेक्निक्स और सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं। और जब वो रिसर्च अपनी करते हैं तो दे डिज़ाइन देयर प्रोजेक्ट्स इन सच अ वे कि हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके जो एरियाज हैं स्पेशलाइजेशन के, वो उनके साथ रिलेट करते हैं। एंड दिस इज़ देयर ओन चॉइस, स्टूडेंट अपनी चॉइस के साथ अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं। एंड UCP और उसके साथ साथ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उनको फुली सपोर्ट करता है फॉर द रिसर्च वर्क, फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच दे आर रिक्वायरिंग।
1: थैंक यू वेरी मच मैम निमरा अफजल। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछूंगा, इन्होंने मुझे एक और सवाल दे दिया, ज़िमनी सवाल निकल आया कि इन्होंने कहा स्पेशलाइजेशन, पहले अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइएगा और किस तरीके से आप अपने MPhil के बच्चों को अपने फील्ड में लेके आगे चलती हैं ताकि जब वो बाहर जाएं दुनिया में तो वो उड़ना सीख जाएं।
4: जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल जो है पूछा है। सो मैं सर अगर अपनी बात करूँ तो आई एम स्पेशलाइज्ड इन एनवायरमेंटल हेल्थ। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ, तो आपको पता है कि जो एनवायरमेंट में स्पेसिफिकली एयर, सॉइल और वाटर आर द मेन कंपोनेंट्स। और इसके लिए फिर मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, सो आई वर्क फॉर द एयर, फॉर द सॉइल एंड फॉर द वाटर। सो व्हाट वी एक्चुअली, मेरे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मेरे साथ रिसर्च करते हैं, तो जैसे अभी मैं आपको चंद एक अपने रिसर्च टॉपिक्स ज़रा आम जुबान में बताऊँ जो आम फहम हो, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको पता है कि प्लास्टिक्स का हमारा यूजेज का बहुत मसला चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन भी किया है। लोगों को सेंसिटाइज करना है कि इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं।
1: रिसाइक्लिंग भी उसमें आती है?
4: जी सर, उसके लिए हम 3 R's की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो द फर्स्ट थिंग इज़ रिड्यूस, तो 3 आवर्स में जब रिड्यूस आ रहा है तो हमें इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है. अब कहीं अगर हम बात करें कहाँ जूलॉजी लोग समझते हैं और कहाँ कहते हैं प्लास्टिक की बात हो रही है, लेकिन सर ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अभी जैसे ये प्लास्टिक जब आपको पता है कि टूट फूट का शिकार नहीं होते, दे डू नॉट डीग्रेड इन नॉर्मल कंडीशंस. सो जब ओवर द ईयर्स 100 ऑफ ईयर्स अगर आपका प्लास्टिक रिटेन करता है और अगर उसकी एब्रेशन हो भी रही है तो वो इतनी स्लो है कि वो माइक्रोप्लास्टिक्स में डिसोसिएट हो जाता है और फिर जब वो वाटर बॉडी से एनिमल्स तक पहुँचता है तो आपकी फ़िश के अंदर बायोकेमुलेट हो रहा है. मैं टर्म्स कुछ ऐसी यूज़ करूँगी जो आम फहम हो कि अगर फ़िश के अंदर या हम अब देखेंगे पाकिस्तान में सी फूड का कितना अब हम लोग जाते हैं, लोग खाते और पसंद करते हैं. जब ये सारी एक्युमुलेशन फिश में आपके लॉबस्टर्स में लेट्स से हो रही है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो रही हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी बॉडी आ रही है और फिर आपकी फंक्शनिंग बॉडी की जो है वो अफेक्ट हो रही है फ्रॉम लिवर फंक्शन टू द रीनल फंक्शन, जिसमें हम किडनीज की बात करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है और हम इसको एनिमल मॉडल्स पे करके देखते हैं. जैसे मेरे स्टूडेंट्स इसको डिफरेंट एनिमल मॉडल्स पे करके देखते हैं और फिर हम उनके इफेक्ट्स देख के रेजोनेट करना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे भी है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. अगर आप फिश फूड कंज्यूम कर रहे हैं या अगर फिश नहीं आप कोई भी सी फूड खा रहे हैं तो अल्टीमेटली यू आर एक्सपोज टू दैट माइक्रोप्लास्टिक इम्पैक्ट. और हमें ये आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में मेरे बाबा भी बताते हैं कि कपड़े के थैले हम लोग लेके चलते थे एंड देट वॉज नॉट अ स्टेटस सिम्बल. एक थैला 1000 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा था, धुलता था, आपका इन्वायरमेंट भी महफूज था. आज हम प्लास्टिक को चाहे कन्वीनियंटली यूज़ करने के चक्कर में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं. सो वॉट वी आर trying to actually assess the repercussions aur phir logon ko sensitize karna to reduce the use of plastic and go for the other alternatives whatever we can have. So ye ek ye term hai kuch hum smoke pe mere students kaam kar rahe hain. Aapko pata hai this is one of the most important issue. To aksar log kehte hain ki ji zoology aur smoke, to the thing is jaise meri zoology ek bahut diverse sir branch hai. So when I talk about environmental health to hum smoke ko bhi dekhte hain ki smoke kis tarah se affect kar raha hai aur उसके अगेन हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स ये भी लगाते हैं कि एक एनिमल मॉडल को एक्सपोज करके देखें कि स्मोक के क्या इम्पैक्ट्स हैं. सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली वर्क, दिस इज़ माय स्पेशलाइजेशन एंड आई विल लीव इट टू रेस्ट ऑफ माय कलीग्स टू यू नो टू डिस्कस देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन.
1: थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी डिटेल्ड ब्रीफिंग. यू पुट एन पर्सन लाइक मी हु इज अ यू नो अ नोविस इन दिस फील्ड वाइजर देन बिफोर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्रीफ. I'm in discussion and elucidation and explanation. Dr. Saab, Dr. Dilawar Hussain, आपसे भी यही सवाल करूंगा क्योंकि बात से बात चल पड़ी और दीप से दीप जलते हैं. तो आप भी अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन बताइएगा स्टूडेंट्स के बारे में और उसके बाद ही आपसे ज़िमनी सवाल भी होगा, अपनी लैब्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा. 2 से 3 मिनट आपके पास है.
2: जी सर, बहुत शुक्रिया सर. सबसे पहले मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बात करूँ तो वो एक्वा कल्चर एंड फिशरीज है, और अगर इसको मैं थोड़ा नैरो रेंज में लेके बात करूँ तो फ़िश न्यूट्रिशन के ऊपर और टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर मेरे जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं. आपको पता है जैसे मैडम बता रही थी कि अभी जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड सी फूड की तरफ, जो कि डैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो उसके अंदर फिर उसकी प्रोडक्शन में कुछ मसाइल आते हैं, जैसे डिजीज़ हैं उसको रजिस्ट करने के लिए. तो उस डिज़ीज़ से कोप करने के लिए फिर उसके ऊपर मेरे जो स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं कि फ़िश के अंदर जो डिज़ीज़ है उसको किस तरह से कम किया जा सके या उसकी जो ग्रोथ है उसको कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं. तो इसके लिए डिफरेंट हम जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट हैं उनको यूज़ कर रहे हैं फीड के अंदर और लैब के अंदर ट्रायल लगा के देखते हैं कि वो फ़िश के अंदर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कितनी आई है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप. इसी तरह से कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं फीड के अंदर ताकि हम ये देख सकें कि वो जो ऑयल्स हैं वो किस तरह से जो फ़िश के इम्यून सिस्टम है उसको वो बूस्ट अप करते हैं ताकि वो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस दे सकें और फ़िश की जो ग्रोथ है या जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हम उससे ले सकें. उसके बाद सर दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया लैब्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6-7 वेल एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं और वो तमाम स्टूडेंट उसके लिए वो तमाम मौके हैं कि वो किसी भी लैब में जाके ओपनली काम कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी अपनी जूलॉजी की भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिपेंडेंट लेबॉरेटरी है जिसके अंदर हमारे जो इस वक्त के इंस्ट्रूमेंट हैं जो चाहिए वो सारे के सारे मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल मैं 1-2 का आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा. जैसे हमारे पास वहाँ पे जूलॉजी लैब में PCR मशीन है जिसके ऊपर हमारे MPhil के और इवन के PhD के स्टूडेंट हैं दूसरे डिपार्टमेंट से वो आके वर्किंग कर रहे हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है हमारे ऊपर हमारे जूलॉजी लैब में जिसके ऊपर स्टूडेंट काम कर रहे हैं. इस तरह से जेल डॉग एक ऑपरेटस है, एग्रोस जेल वगैरह जब स्टूडेंट रन करते हैं उसके ऊपर. इंक्यूबेटर हमारे लैब के अंदर मौजूद है, माइक्रोवेव ओवन वहाँ पे मौजूद है, फ्लेम फोटोमीटर हमारी लैब के अंदर जोलॉजी लैब के अंदर मौजूद है। इसके अलावा -80 का फ्रीज़र जो पूरे UCP में सिर्फ हमारी लैब में जोलॉजी में मौजूद है, जिसके अंदर हम जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमारे सैम्पल्स को सेव करना हो

0: में डिस्टर्बेंस आती है एंड दैट अफेक्ट्स द होल पर्सनैलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, उसके बारे में भी हम रिसर्च कराएंगे, कराते भी हैं. और उसके साथ साथ हम कैंसर बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो वी हैव स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक्स जो कि रिलेटेड टू कैंसर बायोलॉजी हम करा रहे हैं, जिसमें हमारी एक जो पर्टिकुलर प्रोटीन है P53 जो कैंसर में अपना बहुत रोल प्ले कर रही है, वी आर एक्चुअली टारगेटिंग दैट जीन कि अगर हम उसको मैनिपुलेट करते हैं या किसी भी तरह से उसमें हम कुछ एडवांसमेंट लाते हैं तो क्या हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं या नहीं. तो एनिमल्स के ऊपर, हम एनिमल मॉडल के ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कि हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं बाय टेकिंग एनिमल्स एज अ मॉडल, जो कि हमारे यहाँ एक प्रॉपर फैसिलिटी भी है जिसमें हम एनिमल हाउस में हम रेयर करते हैं डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं जिसमें रैट्स हैं माइस हैं, और इन सब के ऊपर स्टूडेंट्स हमारे अपने रिसर्च करते हैं. दे रन देयर ट्रायल्स ओवर देयर और कंट्रोल ग्रुप्स हैं जो, जैसे पहले भी बात हो चुकी है, रिसर्च में हम इसी तरह से करते हैं कि एक हमारा जो कंट्रोल है और उसके साथ साथ जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं तो हम उनको कंपेयर करते हैं. एंड स्पेसिफिकली जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात करें, उसके साथ साथ हमारा जो रीनल फेलियर होते हैं डिफरेंट, ओमेप्राजोल एक बड़ी कॉमन सी है हमारी टैबलेट जो हम यूज करते हैं फॉर द डाइजेस्टिव फंक्शन, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि दैट इज एक्चुअली कॉजिंग रीनल फेलियर, और उस रिसर्च को भी लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. उसके साथ साथ हम जैसे स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हैं, हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो अनाज है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम बनती है. तो ये पेस्ट को भी हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वी आर ट्राइंग के उस पेस्ट को भी हम एलिमिनेट कर सकें सो दैट जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया ना होने पाएँ, और हमारे स्टूडेंट्स को इस तरह से अवेयरनेस भी होती है, दे कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दो स्ट्रेटजीज एट देयर होम्स. और इसके साथ साथ जो अवेयरनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड है उसमें भी जैसे हम बच्चों को थोड़ा ये बताते हैं कि आपको अपना जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है, आपको जो प्लास्टिक्स हैं उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है. इफ़ जैसे बात से बात चलती है तो अगर हम एक क्लास में कुछ 15-20 या 25 स्टूडेंट्स हैं उन तक ये बात पहुंचाते हैं तो ये इट बिकम्स अ वर्ड ऑफ माउथ और ये बहुत दूर तक फैलती है. आप देखें कि जितने हमारे 20-25 घरानों में अगर वो बच्चा एक भी बात किसी दूसरे से करेगा तो ये अवेयरनेस फैलेगी, और यही हमारा बेसिक इशू है जो सस्टेनेबिलिटी को लेके हम चल रहे हैं आजकल, जिसमें हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. जो हम ये कह रहे हैं कि अगली आने वाली जनरेशन क्या देखेगी इस ज़मीन के ऊपर, तो हम वी आर ट्राइंग एज जूलॉजिस्ट के हम अपना रोल प्ले करें ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैले और वो थोड़ा काम कर सकें इस चीज़ के ऊपर कि कैसे महफूज बनाया जा सकता है इस एनवायरनमेंट को, कैसे महफूज बनाया जा सकता है इस ज़मीन को ताकि हम इसके ऊपर सुकून से रह सकें.
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नागरा. अभी मैं यही सवाल लेके डॉक्टर निमरा की तरफ बढ़ूंगा, मुझे पता है मजीद जहतें खुलेंगी इस बारे में, मैं जानता हूँ, और उनसे मैं एक और सवाल भी करूँगा उनके एनिमल हाउस के बारे में. लेकिन डॉक्टर साहबा, पहले यही सवाल जो डॉक्टर नागरा ने उससे पहले डॉक्टर दिलावर हुसैन ने किया, इस पर रोशनी डालिएगा.
2: जी सर, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली मैडम जैसे बहुत ज़्यादा हम फोकस करें कि रिसर्च, तो रिसर्च के लिए हम नॉर्मली ये कहते हैं कि वी डू नॉट ओनली स्टडी साइंस, वी डू साइंस. सो व्हाट वी डू इन द साइंसेस के हमारे प्रोजेक्ट्स जैसे भी आपको मैडम ने बताया पेस्ट मैनेजमेंट पे हैं. सो अगर आप देखें तो UN का एक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो है वो ज़ीरो हंगर पे है. तो अब आप ये चाह रहे हैं कि विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और जो हमारे पास स्ट्रेस आ रहे हैं हमारे रिसोर्सेज पे, वहाँ पे भूख जो है एक बड़ा आने वाला जिसे कहते हैं देव है, मसला है हमारे लिए. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू मैनेज द पेस्ट. पेस्ट का एक मसला ये है कि वो रेजिस्टेंस कॉज करता है. थोड़ी देर आप उस पर कोई स्प्रे यूज़ कर लेते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर लेते हैं, कुछ देर के लिए तो कंट्रोल रहता है, लेकिन कुदरत ने उसको भी एक कैपेसिटी दी है कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है. उस रेजिस्टेंस के साथ जो जंग है वो कॉन्टीन्यूस रहेगी और वो चेंज होती रहेगी और डिफरेंट मोड में आती रहेगी.
1: दोनों तरफ से रेजिलियंस का
2: मामला है. वो हमने पढ़ा है साइंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो हम चाहते हैं कि फिटेस्ट हम रहें, क्योंकि अगर रहना है तो ये मैनेज तो करना पड़ेगा. तो इसीलिए सर फ्रॉम द पेस्ट मैनेजमेंट जिस तरह

0: हमने जीरो हंगर की बात की और फिर एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू आ रहा है,
1: ये भी एसडीजी गोल में से एक गोल
0: जी है। बिल्कुल। तो अब जब हम बात क्लाइमेट चेंज की करते हैं, जिसको दुनिया पहले मानने को तैयार नहीं थी और आज हम उसके जिसे कहते हैं रिपरकशंस देख रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स देख रहे हैं हमारे जो सीजन में आपके बारिशों के पैटर्न है, रेन का सीजन है या अभी लाहौर में या पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो मेजर इफेक्टेड सिटीज़ है ड्यू टू पोल्यूशन, और फिर इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, तो सर्वाइवल तो हमारा मुश्किल हो ही रहा है। तो जूलॉजी इस कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट है। आपको जब अभी हमारे माशाल्लाह सर जैसे आपका ताल्लुक फिजिक्स से है, तो हम इंटरडिसिप्लिनरी काम भी कर रहे हैं जहां हम जो जूलॉजी के लोग हैं वो एनिमल इंट्रैक्शंस बताते हैं, तो मैथ्स वाले उस पर मॉडलिंग करते हैं, फिजिक्स वाले उस पर उन जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उन पर डिटेल्ड हमें ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वी कैन मेक अ comprehensive project to you know to cope with the problem we are facing in
1: and
0: this
1: move
0: world
1: ahead.
0: Yes, and move ahead. So this was particularly very at a very small scale when we talk about 90s when the people were doing research. Main apni duniya mein thi, zoology wale apni duniya mein the, ya physics wale apni duniya mein the. Aaj hum ye jaan chuke hain that we have to work in collaboration,
1: not in isolation.
0: So zoology or specifically UCP mein faculty of science and technology ki baat kare to we are now open to work together to actually provide a comprehensive solution of the problems we are facing. और वो प्रॉब्लम्स तो वही हैं, तो हमारी ये जंग ख़त्म हो गई है कि कौन बेहतर है, हमें पता है कि सबकी ज़रूरत है और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है।
1: Few words on your animal.
0: जी, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल मॉडल्स, तो एनिमल मॉडल इस्तेमाल करने के लिए एक तो सबसे पहले हमारे पास एक कमेटी है कि हमारा एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर है वे वी पास द साइनॉप्सिस, जो आप रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारा एक एथिकल रिव्यू बोर्ड है क्योंकि एनिमल्स को बगैर किसी एक प्लान प्रोग्राम सिनेरियो के आप नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू इज़ के पहले तो एक आपका साइनॉप्सिस एक प्रोसेस से गुजरता है कि आपको उस पर एनिमल मॉडल लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी जैसे हमारी जब उस प्रोसेस से गुजर आता है प्रपोजल, देन वी हैव अ एनिमल हाउस फैसिलिटी वेयर वी आर वेरी मच विजिलेंट अबाउट द नंबर ऑफ एनिमल्स बीइंग यूज्ड बिकॉज देयर आर एथिकल कंसिडरेशंस व्हिच वी कीप इन माइंड बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रायल, एंड फॉर दैट ट्रायल वी हैव एन कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी नॉन एज एनिमल हाउस, और वो एनिमल हाउस यूसीपी के फार्मेसी स्कूल भी यूज़ कर रहा है, जूलॉजी के लोग भी यूज़ कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ एन ओपन हाउस फैसिलिटी वेयर यू हैव टू फर्स्टली गो थ्रू द एथिकल रिव्यू बोर्ड एंड देन यू कैन हाउस योर एनिमल्स इन द एनिमल फैसिलिटी। उसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, माइस हैं, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, उनकी हाउसिंग की जाती है एंड द स्टूडेंट्स एक्चुअली आर इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल हाउस। और उसमें हमारी फिश भी हम लोग वहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंसिव सेट with the students do the animal trial including the fish। अब उसमें आ जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्योंकि उसको हाउस कर रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो एनिमल रेयरिंग कर रहे होते हैं, एंड देन दे आर डूइंग इट कंसिडरिंग द एथिकल गाइडलाइंस। तो उस पर हम अपना लेट्स से कि अगर कोई प्लूटेंट है उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं या यूजेज है, जैसे अभी मैडम ने हमें ओमेप्राजोल की बात की, तो बहुत फ्रिक्वेंटली हम ये एक दवाई खा लेते हैं कैप्सूल खाने से पहले, तो इसकी क्या रिपरकशंस हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं ना रिसर्च, वी आर वर्किंग ऑन द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सो दैट कि हम जो रिसर्च करवाएं उसकी एप्लीकेशन हो आपके रियल वर्ल्ड में और हमारे मसले जो हैं वो इस हकीकी ज़मीन पे वही हल हो।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर निमरा अफजल, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव तरीके से बयान किया अपने एनिमल हाउस को। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम एक वक्फा की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक। हम फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं भी बढ़ूंगा डॉक्टर दिलावर हुसैन की तरफ। डॉक्टर बताइएगा, अपने स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से आइंदा आने वाले जमाने के लिए फॉर द फ्यूचर तैयार करते हैं? सेमिनार्स, विजिट्स, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंसेस, आप बताइए इस बारे में।
2: तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट जूलॉजी में रेगुलरली सेमिनार जो वर्कशॉप स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और आपको पता है ये जो सेमिनार और ये जो वर्कशॉप है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है स्टूडेंट की लर्निंग के अंदर, उनकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर, उनके न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, उनके कैरियर रेडीनेस के लिए, उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हम ईयरली और सीरीज़ ऑफ सेमिनार हमने अरेंज करते हैं, उसमें कुछ को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे नंबर वन के ऊपर हम हर साल वर्ल्ड फिशरीज डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके अंदर हमारी एक पूरी एक फुल डे की एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम पहले स्टार्ट करते हैं एक अवेयरनेस वॉक के साथ, और उसके बाद हम जो है वो स्पीकर को बुलाते हैं फ्राम दी रैली रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, जैसे पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से हम एक स्पीकर को बुलाते हैं ताकि वो स्टूडेंट को जो है वो जो करंट इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं एक्वाकल्चर और फिशरीज़ के ऊपर, उसके ऊपर उनको टॉक दे सके। उसके बाद दूसरा हम वर्ल्ड फिशरीज डे को भी सेलिब्रेट करते हैं ईयरली, उसके अंदर भी उसी तरह से हम डिपार्टमेंट फिशरीज से लोगों को बुलाते हैं एज इनवाइटेड स्पीकर, और जो इस वक्त की टॉपिक्स हैं जैसे GIS की मैपिंग है उसके ऊपर बच्चों को हम जो वर्कशॉप्स हैं जो सेमिनार वो डिलीवर करवाते हैं। इसके अलावा हमारी एक बहुत ही फेमस टैक्सीडर्मी की वर्कशॉप हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो कि हम हर साल जो है इसको स्टार्ट करते हैं, बच्चे इसको पूरा सीखते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास जो एनिमल्स हैं, ख़ास ऊपर जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको स्टफिंग सिखाते हैं कि कैसे उसको हमने प्रिजर्व करना है फॉर रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने हमने घर में रखने के लिए या एज ए शो के पीस के तौर पर, कि वो एनिमल जो बेचारे डेड हो गए बजाय इसके कि वो हम उसको इन्वायरमेंट को ख़राब होने दें, उनके फिर हम क्या करते हैं स्टफिंग करते हैं। तो ये पूरी एक साइंस है जिसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। इसके अलावा हम एपिकल्चर के ऊपर, हनी बी फार्मिंग के ऊपर हमारी वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, सेरीकल्चर को हमारी वर्कशॉप है वो हम करवाते हैं, लैग कल्चर के ऊपर लास्ट ईयर हमने एक जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट करवाई थी। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट हम उनको एक पूरा एक ओवरव्यू देते हैं कि सिर्फ क्लासरूम तक उनको महदूद नहीं रखते, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम उनको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया। अभी हम तकरीबन बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। डॉक्टर शाजिया नागरा से पूछूंगा, फिर उसके बाद आखिरी सवाल करूंगा डॉक्टर निमरा अफजल से। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शाजिया नागरा साहब, आपसे सवाल है कि व्हाई जूलॉजी एट UCP, व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर डिपार्टमेंट?
3: थैंक यू सर। जैसे अगर हम बात करें कि व्हाई जूलॉजी एट UCP, तो व्हाट आई कैन ऐड इनटू दिस के हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल इक्विप्ड लैब्स हैं यहाँ पे। वी हैव almost all the faculty members, they have done their PhDs and of course they are very experienced, or jis tarike se wo bachon ko apna jo bhi subject hai usse related jo information pahunchate hain, main samajhti hu ki hum yahan bahut mehnat se bachon ko ye sara kaam karwa rahe hain, and specifically agar research ki baat ki jaye तो हर एक सुपरवाइज़र बच्चों के लिए फुल टाइम अवेलेबल है। वी हैव डिस्प्लेड द टाइम टेबल्स, उसके अंदर हमने अपने प्रॉपर रिसर्च आवर्स रखे हुए हैं, और उसके अलावा जो फ्राइडे का दिन है वो भी कुछ ऐसा रिसर्च के लिए हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह से हम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करें इन सारी चीज़ों को, या एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे बहुत सारी और यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हमारे पास आते हैं MPhil के अंदर, दे हैव एक्चुअली टोल्ड अस कि जैसे BS में उन्होंने वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ इंजॉय की हैं, या उन्होंने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे BS लेवल के ऊपर भी हम बच्चों को जो प्रोजेक्ट कराते हैं तो प्रॉपर थीसिस लिखते हैं वो, और प्रॉपर रिसर्च करते हैं। जबकि बाकी जगहों से आने वाले बच्चों के से हमें ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला है कि वो वहाँ पे BS लेवल पे उनको प्रॉपर प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं या नहीं, या उनका कोई रिसर्च का एक्सपोजर है या नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट और आई वुड रिकमेंड कि अगर BS जूलॉजी کرنا ہے تو پھر آپ یو سی پی ہی آئیں, بیکاز اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز آر ہیئر, اور اسپیسیفکلی جتنے ہمارے سارے ایکسپیرئنس قسم کے ٹیچرز ہیں یہاں پہ, وہ بہت کیئر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایکسل کریں اپنی فیلڈ کے اندر, اور جب یہ باہر نکلیں تو پراؤڈلی دے کین پریزنٹ دیم سیلوز ایز یو سی پی این, اور وہ بتا سکیں کہ ہم نے یہ چیز لرن کی ہے یہاں سے اور کتنے اچھے طریقے سے لرن کی ہے. سو دس از بیسیکلی دا تھنگ.
1: میں نمرہ افضل آپ سے یہی سوال, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل سوال بھی آپ ہی اختتام کروں گا آج کے پروگرام کا. پہلا سوال تو یہی, وائی سو اسپیشل ان یور ڈپارٹمنٹ دیٹ it should be the first choice of all the incoming students, right? And second, you are also holding the portfolio of the research journal of FOST. It just struck my mind. So usi pe ikhtitam kijiyega, 2 se 3 minute aapke paas hai.
4: Ji sir, bahut shukriya. Sir, performance is always evaluated by the indicators, right? So sirf jaise madam ne aapko bataya ki teaching and research excellence, to uske main aapko kuch indicators apne success point bata deti hu. So in our BS program jo bacche hamare research karke yahan se pass out hote hain, they have a number of research publications. Aap ye kahin pe nahi dekhenge ki government universities pe bacche research publications karte hain BS level pe. So I have a complete proof that our BS students are publishing their research in high impact factor journals. So one of my student has actually published almost 20 papers at the level of BS. ہاں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچہ کتنا انٹرسٹڈ ہے, لیکن وی پرووائڈ دیٹ پلیٹ فارم کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یو آر کیپیبل ٹو کنٹریبیوٹ ان دا سائنس. سو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وی ڈو سائنس, سو وی پبلش سائنس, یس ایگزیکٹلی. سو دس از ون آف دا انڈیکیٹر. سیکنڈ انڈیکیٹر از کہ ہمارے بی ایس کے اسٹوڈنٹس, مور دین 15 اسٹوڈنٹس ور سلیکٹڈ فار دا انڈونیشین یونیورسٹیز فار ایم فل. This is another success point. So where we are imparting a knowledge, where we are preparing the students for the international competition, for the scholarships and everything like that. So our students are also, you know, studying currently for the master's program in international universities. The third point is we have a faculty that is comparatively young enough and are actually working in the field too, because they have the hunger of success, right? So they are working, they have that motivation to work, and then the students become the, you know, driving power for them, and they work together to make a impact.
1: You very rightly said you are working your heart out,
4: yes,
1: for them. So the last part, that is the journal.
4: Ji. So sir, main managing editor bhi hoon apne hamare faculty of science and technology ka journal hai, UCP JST, journal of science and technology, that is currently holding the status of Y category. HEC approved hai, Y category mein hai, and we started in it in 2022, and now we are looking forward for the X category. And in that particular journal hum log different جو بیسک سائنسز ہیں اور اپلائڈ سائنسز ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں. دس جرنل از آلسو ان کلیبوریشن ود دا فیکلٹی آف فارمیسی. سو یہ دو فیکلٹیز جو ہیں دے آر ورکنگ ہارڈ آن دا سائنسز ٹو کانٹریبیوٹ سم تھنگ, اینڈ یہ جرنل جو ہے یہاں پہ ہم پبلش کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اس کام کو جو کہ انوویٹو ہے اینڈ یٹ پریکٹیکل ہے. So I invite from the forum of Faculty of Science and Technology to please put your paper forward for your research publications if you want to publish it in a Y category approved journal, so that specifically sir BS ke bacche jo chote project karte hain yet impactful hain, they can contribute to the journal. You are always welcome to contribute.
1: Bahut badi baat hai, very exhaustive explanation given by you. Thank you so very much all of you, Dr. Shazia Imtiaz Nagra, ڈاکٹر نمرا افضل, یعنی نمرا افضل مجھے معاف کر دیجیے گا تلفظ میں اگر غلطی ہو کوتاہی ہو, اور ڈاکٹر دلاور حسین. بہت عمدہ گفتگو رہی, مجھے یہ ماننے میں کوئی باک نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے کہ میں آج یہ چھٹا پروگرام کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ اٹ از ون آف دا موسٹ انٹرٹیننگ اینڈ انلائٹننگ ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ سامعین ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا. آخر میں ہمیشہ پاکستان زندہ.

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है।

Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: FM 92.6.
1: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP Kidunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Live Station of the Nation.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. जी हाँ, आज हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ विजन पे. जनाबे वाला, जैसे कि तारीख में एक नज़र हम डालें तो हमें एक पर्सनालिटी मिलती है अमेरिका में, जिसका नाम है जी अवेकन द गैंट विदन की किताब के आगाज़ में टोनी रॉबिसन. टोनी रॉबिसन एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी तारीख का आगाज़ ऐसे होता है कि वो एक मजदूर थे. एक रोड पे एक रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो रोड पे जनाबे वाला मजदूरी कर रहे थे. ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, तो वो अपने दोस्त को कहते हैं कि वो तुम हेलीकॉप्टर देख रहे हो, ऐसा हेलीकॉप्टर मैं भी लूँगा. तो जनाबे वाला तारीख ने देखा कि बिल्कुल 10 साल के बाद एक शख्स अपनी वाइफ के साथ अपने पर्सनल हेली पे एक रोड के ऊपर गोल गोल चक्कर लगा रहा था. उसकी वाइफ ने पूछा कि तुम क्यों इस रोड पे चक्कर लगा रहे हो, गोल गोल घुमाई जा रहे हो. तो उसने अपनी वाइफ को जवाब दिया कि ये वो रोड है जिस पे मैं मजदूरी कर रहा था. मैंने एक विजन देखा कि जो ऊपर है, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, मैं सेम ऐसा हेलीकॉप्टर लूँगा और मैं एक मज़दूर था. तो मेरे दोस्त ने मुझे झटका दे के कहा, पागल, ठेकेदार आ जाएगा, सही तरीके से मजदूरी कर, शाम को पैसे ले कर जाने हैं. तो विजन की इम्पोर्टेंस अगर हम यहाँ से ही देखें कि उस इंसान ने जो 10 साल पहले सोचा और 10 साल के बाद उसको पाया, और सिर्फ ये नहीं पाया, आज तारीख इस बात की गवाह है कि जब वो अपने सेशंस के लिए निकलता है अपने हेली पे, कि उसने जाके स्टेडियम में रुकना होता है, स्टेडियम में खड़े होकर उसने सेशंस देने होते हैं, तो एक रश होता है, एक हजूम होता है, पूरी दुनिया से लोग इतना कॉन्सर्ट्स में नहीं जाते जितना उसकी 10 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच, छोटी सी मोटिवेशनल बात को सुनने जाते हैं. 50 मिलियन से ज़्यादा, अगर वो किताब लिखता है अवेकन द गैंट विदिन के नाम से, उसने किताब लिखी, 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सोल्ड हुई, 15 से ज़्यादा ज़बानों में उसको ट्रांसलेट किया गया. तो जनाबे वाला, ऐसे शख्सियात कहाँ से आती हैं? जनाबे वाला, ऐसी शख्सियात विजन ट्रैक को फॉलो करके आती हैं. अगर आप भी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कामयाबी को छू लें, कामयाब हो जाएं, बेशक वो रूहानी कामयाबी है, बेशक वो ज़िंदगी की पेशावराना कामयाबी है, तो उसके लिए विजन होना बहुत ज़रूरी है. विजन एक सोच का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है. हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान, इसकी भी तारीख एक विजन की तारीख है, एक ख्वाब की तारीख है, जो अलामा इकबाल ने सोचा. दो कौमी नज़रिया पेश किया गया और फिर उस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे ये मुल्क मार्ज वजूद में आया. तो विजन की इम्पोर्टेंस तो हमें यहाँ से ही पता चल जाती है कि मुल्क अगर बन रहा है तो उसके पीछे विजन है, सोच है, एक बुनियादी चीज़ है ना. कि आप अगर 1-2 क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी सोच को बिल्ड करना है कि देखें मैंने 3-4 क्लास तक अपनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना है, या जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद आ रही हैं उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है. आपने अपना ट्रैक खुद बनाना होता है. मुझे आज भी याद है जब पहली दफ़ा मैंने स्टेज को पिक किया, मैं प्रेप क्लास में था और एक छोटा सा प्ले था जिसमें दुल्हे का करेक्टर करना था, तो मैंने पहली दफ़ा तब स्टेज पकड़ा. 3-4 क्लास में मैंने अपने स्कूल में डिबेट्स करना स्टार्ट की. 6-7 क्लास में आया तो मैं नेशनल डिबेट्स तक पहुँचा. देन 7th-8th में आया, मुझे हॉकी पसंद आई, मैंने हॉकी को सिलेक्ट किया. ठीक है, हॉकी मैं खेला, मैंने प्रोविंस लेवल तक, पंजाब तक मैंने हॉकी को खेला. हॉकी को खेलते खेलते देन मैं वापस डिबेट्स में आया, मैंने फेडरल बोर्ड की तरफ से नेशनल विन किया डिबेट्स में, उर्दू डिबेट कंपटीशन में. देन इट वाज द टाइम कि जब मुझे सिलेक्ट करना था कि अगर मेरे अंदर बोलने की स्किल्स हैं तो मुझे किस तरफ जाना है. सो मैंने अपना ट्रैक खुद चूज़ किया. ना मेरे ख़ानदान में कोई मीडिया से कोई ताल्लुक़ रखता था, ना मेरे आसपास पड़ोसियों में, नेबर्स में, सरगोधा के कल्चर में, या आपको आर्मी मिलती है, या आपको सरकारी इदारों की नौकरियां मिलती हैं, या कुछ बहुत कम लोग हैं कि जो कारोबार करते हैं. तो जनाबे वाला, उस माहौल में परवरिश पाते हुए अपना विजन यही रखा कि मैंने दुनिया को बताना है, दुनिया को बोल के बताना है, मेरे पास बोलने की स्किल है, इसको इस्तेमाल करना है. मीडिया पसंद आया, मीडिया को चूज़ किया, स्ट्रगल की, मेहनत की, और आज कुछ ना कुछ मीडिया में काम कर रहा हूँ. سو ویژن آپ کو سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. آپ بہت سی ایسی سیاسی شخصیات بھی ہیں جنہوں نے اپنے ویژنز بلڈ کیے بچپن سے ہی, اور جناب والا وہ ویژن کامیابی سے انہوں نے اپنے لوگوں تک, اپنے حلقہ احباب تک, اپنے دوستوں تک اس طرح سپریڈ کیے کہ ان کے ویژنز آج تک زندہ ہیں. معاشرے میں نظر آتا ہے کہ مولانا رومی نے اگر کوئی بات کی تھی تو وہ آج تک چلتی آ رہی ہے, کیونکہ وہ لوگ مقاصد کے ساتھ زندگی جیا کرتے تھے. جس انسان کے پاس مقصد نہیں ہے وہ انسان یقین مانے 10 سال بعد بھی زیرو پہ کھڑا ہوگا. ہمارے ملک میں ایک میجر پرابلم ہے کہ جب ہم 9th 10th میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ ہی نہیں سکھایا جاتا کہ ہم میٹرک میں بایو, فزکس, کمپیوٹر ان سبجیکٹس کو رکھنے جا رہے ہیں, سٹیٹس کو رکھنے جا رہے ہیں. تو کیوں رکھنے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان سبجیکٹس کو رکھو, ان کی وجہ سے تمہیں میٹرک میں اچھے نمبر ملیں گے. یار بچہ میٹرک میں اچھے نمبر لے کے بیٹھ جائے گا, اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ بنا ہی کسی اور چیز کے لیے ہوگا. آپ نے اس کو ڈالا سائنس میں کیونکہ اس کے میٹرک میں نمبر اچھے ہوں گے اور اس کو اچھی نوکری مل جائے گی. اس نوکری کے لیے فٹ ان ہو رہا ہے؟ میرے جیسا بندہ جس کا کام ہی بولنا ہے, جس کا کام ہی بات کرنا ہے, جس کا کام ہی ایکٹ کرنا ہے, جس کا کام ہی ڈائریکٹ کرنا ہے, اس کو اگر آپ اٹھا کے ایک ایسے میں مثال دیتا ہوں, کسی بھی سرکاری دفتر کے اندر مجھے وہ بٹھا دیں گے میتھس اور کلیریکل کام میں, کیا میں کر پاؤں گا؟ میں کروں گا, کیونکہ میرے اوپر ایک بوجھ ہوگا پیسوں کا کہ مہینے کے بعد میری تنخواہ آنی ہے, لیکن میں کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکوں گا. ہاں, اس مائک کے آگے بیٹھ کے آپ تمام احباب سے مختلف اوکیئنس پہ, مختلف ایونٹس پہ, مختلف موضوعات پہ جب بات کرنے کا موقع ملے گا تو شاید میں بہت بہتر طریقے سے کر سکوں گا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کو, ہمارے معاشرے کو ہماری ضرورت کس جگہ ہے. میں پہلے بھی اس چیز کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جب انسان کو پیدا کیا ہے, ہر ایک شخص کو پیدا کیا ہے, تو اس کے سائز کا ایک جوتا, جیسے جوتے کی مثال ہوتی ہے نا کہ اگر میرا پاؤں 9 نمبر ہے تو مجھے 9 نمبر ہی جوتا آئے گا, میں کبھی بھی 7 نمبر 6 نمبر جوتا نہیں پہن سکتا. تو آپ کا کریئر بھی ایسے ہی ہے, آپ کا پروفیشن بھی ایسے ہی ہے. اللہ کی ذات نے آپ کے ساتھ آپ کا رزق ایسے ہی لکھ کے دیا ہے. آپ کسی اور رزق کے تلاش میں 6-7 نمبر جوتے کے اندر فٹ ان نہیں ہو سکتے. آپ کا کریئر ایک شوز کے سائز کی طرح ہے. اگر آپ 9 نمبر پاؤں کو 9 نمبر شوز کے اندر رکھیں گے تو تبھی زندگی میں فٹ ان ہو پائیں گے. ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جناب والا بہت سے ایسے برانڈز ہیں کہ جن کے جو آنرز ہیں, سی اوز ہیں, انہوں نے اسٹارٹ اپس ہی اپنی 40-50 کی ایج میں آ کے کیے, کیونکہ انہوں نے اپنے اس کریئر جو فٹ ان پوزیشن تھی اس کو وہاں آ کے فائنڈ آؤٹ کیا. سو کوئی بھی لیٹ نہیں. ہمارے سامعین میں بہت سے ایج سیکٹرز کے لوگ ہوں گے. اپنے ویژن کی تلاش کی جستجو کریں. آج ہی سوچیں کہ آپ کو اللہ کی ذات نے کس کام کے لیے بھیجا ہے. شاید آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہو, شاید آپ جس پوزیشن پہ, جس جگہ پہ کام کر رہے ہوں وہاں ہی آپ کے لیے اللہ کے ساتھ ایسی اپرچونیٹیز رکھی ہوں جن کی آپ نے اب تک تلاش نہ کی ہو, جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جس سے ملک کو فائدہ پہنچے, جس سے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے. تو پروفیشنل جو مقاصد ہیں وہ بے حد ضروری ہیں, اپنا ویژن سوچنا بے حد ضروری ہے. آج میں ایک میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے یہ سوچنا ہے کہ 10 سال بعد میں کہاں پر ہوں گا اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں. اگر آج میں کسی ماں کا بیٹا ہوں تو مجھے روحانی طور پر یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کیسے کرنی ہے. اگر آج میں ایک مہذب شہری ہوں تو مجھے سوچنا ہے کہ مجھے اپنے شہر, اپنے ٹاؤن, اپنے گھر کی صفائی کیسے رکھنی ہے. سو ایک روحانی مقاصد ہے اور ایک پیشہ ورانہ مقاصد ہیں. دونوں کا ہونا, سیٹ ان ہونا, ٹریک ان ہونا بے حد ضروری ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. اور جناب والا مسائل جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل ہماری زندگی میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہوتے ہیں. لاسٹ ایک پوڈ کاسٹ میں بھی اسی بات پہ میں نے گفتگو کی تھی کہ اگر اللہ کی ذات آپ کو چھوٹے چھوٹے نجی زندگی کے مسائل نہ دکھائے تو جناب والا آپ ایک بڑے مسئلے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جائیں. میں نے یہ بات کی اور جو جن کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ میں تھا انہوں نے بڑا حیران ہو کے پوچھا کہ انسان مر جائے مطلب کیسے مر جائے. میں نے کہا جناب والا انسان ایک انسیڈنٹ, مطلب नॉर्मली एक टायर के पंचर होने से भी मर सकता है। उसने कहा ये कैसे, मतलब पॉसिबल कैसे है कि इंसान जी टायर के पंचर होने से मर सकता है। मैंने कहा इमेजिन करें कि आपने ज़िंदगी में कोई मसला नहीं देखा आज तक, सब स्मूथली हो रहा है, सब ऐसा हो रहा है जैसे आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, और एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सुकून से चल रहा होता है, आपको पता होता है जो मैंने सोचा होता है वैसा ही होता है, ज़िंदगी में आपने कोई मसला कोई मसाइल नहीं देखे होते, ये एक आइडियल सिचुएशन हम रख रहे हैं। तो अचानक ये होता है कि आपको टाइमली अपने दफ्तर अपनी यूनिवर्सिटी अपने स्कूल पहुंचना होता है और अचानक आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और आपको कॉल आ रही होती है कि ज़रूरी है तुम्हारा आना, तुम क्यों नहीं आ रहे। आपने ज़िंदगी में अगर कोई प्रेशर सस्टेन नहीं किया, कोई प्रेशर फील नहीं किया, लिटरली आप इस टेंशन से मर जाएंगे कि अब इस टायर का क्या बनेगा और मैं स्कूल में कैसे पहुंचूंगा। तो ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, ये नेमत है, ये अल्लाह की ज़ात की नेमत है। जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं आप छोटे छोटे मसाइल देखते हैं, जब आप यंग एज में आते हैं आप छोटे छोटे मसाइल देखते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा डिवेलप करते हैं, यकीन माने दुनिया की ऐसी कोई किताब आपको प्रैक्टिकली इतना मजबूत नहीं कर सकती, दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई फ़लसफ़ा, दुनिया का कोई इंसान आपको ज़ाती तौर पे आपको इतना मजबूत नहीं कर सकता जितने आपको प्रैक्टिकल मसाइल मजबूत करते हैं, प्रैक्टिकल परेशानियां मजबूत करती हैं। मेरा यह मानना है कि प्रैक्टिकल मसाइल ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है जनाबे वाला। अगर आप ये जो स्टूडेंट लाइफ से ले कि आपकी यंग एज तक के मसाइल हैं, अगर यही ना आप देखें तो जनाबे वाला आफ्टर योर मैरिज, शादी के बाद के जो मसाइल होते हैं, जब आपके कंधों पर, एक मर्द के कंधों पर ये जिम्मेदारियां आती हैं कि उसने अपने घर वालों को पालना है, सबको पालना है, तो वो उस परेशानी को सस्टेन ना कर सके, तो खुदकुशी जो बहुत आम होती जा रही है आज की जनरेशन में, डिप्रेशन बहुत आम होता जा रहा है, एनजाइटी बहुत आम होता जा रहा है, उसकी वजह ही ये है कि अपने आप को हमने कमरों तक महदूद कर दिया है। हमारा ताल्लुक मोबाइल से उसका आगाज़ होता है, उस ताल्लुक का और मोबाइल पर ही इख्तिताम होता है। हमारा ताल्लुक रील्स के साथ है, हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के साथ है, हमारा ताल्लुक लोगों के साथ नहीं रहा। इस ताल्लुक को बिल्ड करना ज़रूरी है ताकि ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड आके देखें कि दुनिया में चल क्या रहा है, तब पता चलेगा कि ज़िंदगी को किस तरह और कैसे लेके चलना है। आखिरी सेगमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और बहुत मज़े के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। जनाबे वाला, हम पहुंचे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मतलब कि पर्सनालिटी कितनी ज़रूरी है एक विजन को लेके अगर हम चलना चाहते हैं। हमारी पर्सनालिटी के पॉजिटिव एलिमेंट्स या नेगेटिव एलिमेंट्स, हमें जब विजन पे हम चल पड़ते हैं ना, अपने ट्रैक पे चल पड़ते हैं, तो वो ही एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमने उस पे चलना है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल दूंगा, कोई बहुत बड़ी मिसाल नहीं दूंगा। हमारे आगे जनाबे वाला पेपर्स, ठीक है, हमारा विजन, छोटा विजन ये है कि हमने उन पेपर्स में जी अच्छी परसेंटेज अचीव करनी है, अच्छा CGPA अचीव करना है, अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। तो अब हमारी पर्सनैलिटी में एक चीज़ है कि हम जी डिसिप्लिन नहीं है, या हम डिसिप्लिन हैं, तो वो विजन की जो एग्जीक्यूशन है उसको डिसाइड करेंगे वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मतलब मैं डिसिप्लिन हूँ तो जी हाँ, मैं बैठ तो जाऊँगा, पढ़ भी लूँगा और नंबर भी अचीव कर लूँगा। क्यों? इस पर्सनालिटी ट्रेट ने इस विजन की एग्जीक्यूशन को हेल्प किया, इस मकसद को अचीव करने में।

शायद वही लाइब्रेरी हम देखते हैं। हमने तारीख पढ़ी ना, हमने देखा हम जब हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, जब हम इस्लामी बुक्स पढ़ते, जब हम 6th-7th क्लास में होते और मस्जिद में जाते, वहाँ बयानात सुनते, तो हम सुनते कि लोग पढ़ते थे, लोगों का तालीम से, लोगों का तारीख से, लोगों का फ़लसफ़े से जुड़ना उनको कामयाब कर देता है। तो क्यों ना हम भी जुड़ के देखें, क्यों ना हम देखें कि कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ पढ़ के, इल्म हासिल करके। तो हमें लाइब्रेरी से जुड़ना, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस ट्रैक में ऐड ऑन करना चाहिए। हमें ऐड ऑन करना चाहिए कि हेल्दी माइंडसेट के लिए हेल्दी गेम्स को ज्वाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें स्पोर्ट्स को टाइम देना चाहिए। हमने ये समझा, हमने ये तस्लीम किया, हमने अपने उलमा इकराम से ये सुना कि जनाबे वाला अगर आप 5 वक्त की नमाज को बरकरार कर लें तो जनाबे वाला आप तमाम मकासद को असूल कर सकते हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिनड हो जाते हैं। आपको पता होता है कि 5:30 पे मैंने जाके नमाज पढ़नी है, तो आप 5:30 के लिए जब मेच्योर हो जाते हैं, आप 5:30 के लिए श्योर हो जाते हैं, जब 5:30 के लिए आप जिम्मेदारी समझ के उठते हैं, वैसी ही जिम्मेदारी आप समझ के अपने दफ्तर के लिए भी उठेंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपने पर्सनालिटी में ऐड ऑन कर लिया ना वक्त को समझना, वक्त पे उठना, वक्त की इम्पोर्टेंस, वक्त की ज़रूरत आपने इस 9, 10 और इस ग्रोइंग एज में ही समझ ली, जो आपको फ़ायदा देने जा रही है आपकी प्रोफेशनल करियर में, आपके पेशावराना मकासद के असूल के लिए आपने बचपन से ही इस पर्सनालिटी को अपनी ज़ात में ऐड ऑन कर लिया। आपने सुना कि हमें दोस्तों से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनसे गपशप लगानी चाहिए। तो आपने अगर ग्रोइंग एज में दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिए, आप दोस्तों के साथ बैठने लग गए, उनके साथ गपशप करने लग गए, तो अब जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, पेशावराना ज़िंदगी में आएंगे, तो आप ये देखेंगे, आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि जनाबे वाला आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, आपको लोगों से गुफ्तगू करनी आती है, आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ ऐड ऑन होगी क्योंकि आपने बचपन से सीख ली। साथ ही साथ अगर आप मैनर्स की बात करें, आपने खाना खाना है, अगर खाना खाने के बुनियादी मैनर्स, आप क्या आपके पेरेंट्स आपको तनकीद कर रहे हैं कि तनकीद बराए इसलाह कर रहे हैं कि देखो यार तुम्हें ये चीज़ें करनी हैं ताकि तुम खाना खाओ तो एक तरीके से खाओ। आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, पेशावराना सर्कल्स में आते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में जब आप डिनर्स पे जाते हैं, लंच पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जिस मैनर्स और एथिक्स से मैं खाना खा रहा हूँ, लोग उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं ख़ास हूँ, लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं अच्छा हूँ। अच्छी गुफ्तगू ग्रोइंग एज में सीख जाना आपकी कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब्स में, आपको प्रोफेशनल ज़िंदगी में वो चीज़ें बड़ी ऊपर लेके जाती हैं। हम देखते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर, प्रोफेशनल लाइफ या हमारी कारोबारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो दूसरों से अलग होती हैं, जो सेंट्रल पॉइंट बनी होती हैं तमाम महफलों की। एक स्पोर्ट्स में ही, गेम में ही, अगर कोई इंसान है वो अच्छा खेल नहीं रहा, लेकिन सबकी इंटेंशंस उस इंसान की तरफ हैं, वो क्यों तमाम लोगों की सोच के इर्द गिर्द घूम रहे, क्यों तमाम लोगों के जिक्र की वजह वो इंसान बना हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ उसको बनाती हैं। और ये क्वालिटीज़ का असूल, क्वालिटीज़ का जो माइंडसेट सेट ऑन करना है, वो आपकी ग्रोइंग एज आपको सिखाती है। ये बिल्कुल नहीं आप कह सकते कि आप एक अच्छी आदत 40 साल की उम्र में नहीं सीख सकते, नहीं आप बिल्कुल नहीं कह सकते, आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 साल ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं, तो आपको ये आदत 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ग्रोइंग एज में सीखनी है, टीन एज में। तो आप बींग हमारे जो लिसनर्स हैं, बींग पेरेंट्स, अगर आप ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप बींग स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो अपनी पर्सनालिटी में ऐसे ट्रेट्स को ऐड ऑन करें जिससे आपकी पर्सनालिटी खूबसूरत हो, जिससे आप अगर एक दफ्तर में मौजूद हैं और वहाँ 7 लोग मौजूद हैं, उन 7 में आपकी शख्सियत सबसे अलग हो, वो अपने मैनर्स की वजह से जानी जाए, वो अपने विजन की वजह से जानी जाए, वो अपने क्वालिटी ट्रेट्स की वजह से जानी जाए, वो जानी जाए, लोग बताएं कि हाँ जब ये बात करता है ना बहुत खूबसूरत अंदाज से बात करता है, जब ये बात करता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हमें इसे फॉलो कर रहे हैं। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने लास्ट ईयर
गया था अपने ISSP पे 4 दिन के लिए। मुझे आर्मी सेंटर में रहना था और वहाँ मुख्तलिफ हमारे टेस्ट होने थे। मेरे साथ 12 लोग ग्रुप में थे।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

मौसीकी के सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ हाजिर है मोहम्मद हमादुर रहमान, हेड ऑफ वॉलंटियर्स इन सर्विस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर। प्रोग्राम जुगनू पेश किया जाता है आपको VIS डिपार्टमेंट के पार्टनर इदारों से रोशनास करवाने के लिए हर मंगल सुपहर 3 बजे। सामीन इकराम, बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी मुश्किल को भुला कर दूसरों की मदद करते नजर आते हैं। ऐसे ही एक इदारे का तारुफ आज हम आपसे करवाएंगे, जिसका मकसद ऐसे लोगों की मदद करना है जिन्हें जिंदगी गुजारने में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। आज हम जिस इदारे का तारुफ लेकर हाजिर हुए हैं, उसका नाम है टीम ड्रीम्स, द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। और काबिले फख्र बात यह है कि ये इदारा हमारे ही एक होनहार साबिक तालिब इल्म और बहुत ही होनहार वॉलंटियर जनाब नौरेल अब्बास साहब का कायम करदा इदारा है। इस तरह ये इदारा UCP की एक सक्सेस स्टोरी भी है। नौरेल खुद भी पोलियो का शिकार हुए, मगर इसके बावजूद दूसरों को इंडिपेंडेंट लिविंग का आर्ट सिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नौरेल अब्बास, जो कि बानी हैं टीम ड्रीम्स के। माशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं, इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स भी बहुत सी ले चुके हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पर भी काम करते हैं और लोगों को इंडिपेंडेंट लिविंग के बारे में और उसके जज्बात के बारे में बताते हैं कि क्या जज्बा ज़रूरी है इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए, और हमारे नौजवानों को आज किस तरह के माइंडसेट से चलना चाहिए, इस हवाले से उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं। तो हम वेलकम करते हैं जनाब नौरेल साहब को। सर, वेलकम टू द शो।
3: थैंक यू वेरी मच सर।
2: आप बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने करवाया, ऑल्दो आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी माशाल्लाह एक हैवी प्रोफाइल है आपका। मैं चाहूँगा कि आप अपना और अपने इदारे का अपने अल्फाज में इंट्रोडक्शन करवाइए।
3: बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इन्वाइट किया यहाँ पे। आई एम द ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और UCP की प्रोडक्ट होके मैं खुद इसका एक ब्रांड एम्बेसडर होता हूँ, एंड आई फील प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है टीम ड्रीम्स द आर्ट ऑफ लिविंग, दैट इज़ रन बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसको अफराद बहम माजूरी खुद चलाते हैं, और अफराद बहम माजूरी और जो हमारे नॉन डिसेबल कम्युनिटी है दोनों के लिए इकट्ठे काम करते हैं। हमारे जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम्स हैं, असिस्टिव डिवाइसेस हैं, काउंसलिंग है, एडवोकेसी है, और हमारी जो बेस है वो राइट बेस अप्रोच है। हमारी जो लर्निंग्स हैं वो इंटरनेशनल्स हैं, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश जारी रखते हैं, और पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को इंगेज किया जाता है, इंक्लूडिंग एकेडेमिया और प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स को CSR के थ्रू हम उनको इंगेज करते हैं। इसके अलावा हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इवन के जो रिमोट एरियाज़ में हैं, वहाँ तक हमारी रसाई है, और वहाँ पर एक दूर दराज किसी गाँव में एक छोटी बेटी या एक बच्चा जिसके पास आज भी वो पहली व्हीलचेयर की तलाश में है या इंतज़ार में है, तो हमारी टीम की ये काविश होती है, तो हमारी टीम खुद अपने हाथों से इस तरह की व्हीलचेयर्स बना के उन तक पहुंचाती है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमारे लोकल, इंटरनेशनल और फेडरल और प्रोविंस लेवल पे हमारी जो लेजिस्लेशंस होती हैं उनमें हमारा एक्टिव रोल रहता है। हम ऑब्ज़र्वर भी जाते हैं, एज अ पार्टिसिपेंट्स भी जाते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 8 सालों से काम कर रही है, और इसका जो बुनियाद थी वो हमारे ही इंस्टीट्यूशन UCP से, हमारा स्टूडेंट क्लब था, इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी, हमने वो बनाया और फिर हमने उसी को अपना एक सोशल प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा, और आज भी वो रवा दवा जारी है।
2: माशाल्लाह जी, इट्स अ रियली ग्रेट स्टोरी, और ये खुशी होती है जानकर के हमारे वॉलंटियर सर्विस डिपार्टमेंट के थ्रू गुजरने के बाद बच्चे इतना मोटिवेटेड हो भी जाते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो खुद से अपने सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फर्दर पूरी ज़िंदगी के लिए वॉलंटियर बन जाते हैं और कुछ आपकी तरह माशाल्लाह अपना एक सेटअप ऐसा बना लेते हैं जिसमें और लोगों की मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब बात हो रही है आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग की, डोंट यू थिंक कि इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत सभी नौजवानों को आजकल नजर आती है, वैसे मेजोरिटी को, सभी तो खैर स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, अक्सर नौजवानों को इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग की जरूरत आजकल नजर आती है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में?
3: हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, यहाँ पे सोशल कल्चर है, वी आर डिपेंडेंट ऑन आर फैमिली
2: एग्जैक्टली,
3: और हम देखते हैं कोई एक कमाने वाला और बाकी सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो ये जो खुद मुख्तारी वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही हमने इसलिए अडॉप्ट किया और इसी की ट्रेनिंग दी जाती है कि एक बंदा जब वो खुद मुख्तार हो जाएगा फाइनेंशियली अपने करियर के हवाले से और मेंटली अपने डिसीजंस के हवाले से, तो इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो इंसान को चॉइसेस फराहम करती है, वो चॉइसेस ऑफ लिविंग है। चॉइसेस ऑफ लिविंग में आ जाते हैं रोज़मर्रा के डिसीजंस। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि आपने एक शर्ट खुद बाय की फॉर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी शायद वो पिछले 10 साल से कभी मार्केट गया ही नहीं और उसने अपनी पसंद के कपड़े जूते खुद से नहीं लिए, उसको ला के दिए गए, या कभी किसी ने यही इमेजिन नहीं किया होगा कि वो सुबह उठे और सुबह उठ के वो पहले अपनी टॉयलेटिंग ना कर सके। तो हमारे पास इस तरह की ज़िंदगी की तलख हकीकतें भी हैं जो हम फेस करते हैं, लेकिन साथ में हमारा मैसेज सबके लिए यही होता है कि ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल भी है, लेकिन अगर हम फैसिलिटेट करें, लोगों की रसाई हम उन तक पहुंच जाएं, जो हम तक नहीं पहुंच सकते हम उन तक पहुंच जाएं, और डिजिटल दौर में आज भी अगर कोई रह जाए पीछे तो हम एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस मुल्क के जिम्मेदार शहरी हैं, और जो भी लोग किसी सिस्टमेटिक वे से वॉलंटियर करते हैं या अपनी ज़िंदगी में अपनी कॉरपोरेट लाइफ में या अपनी आफ्टर ग्रेजुएशन अपने बिजनेसेस को टेक ओवर करते हैं, तो उनसे हमारी हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी जॉब प्लेस पे अपनी कंपनी में अपने कारोबार में उसका इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, रादर के वो डिपेंडेंट रहें। तो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो अपनी फैमिली के ऊपर जो इस वक्त फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा और एक हेल्दी फैमिली का इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और इसी तरह जैसे आपने पूछा कि आजकल के जो नौजवान हैं उनके लिए भी ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, तो ये सबके लिए है, क्योंकि खुद मुख्तारी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। इट टेक्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट टेक्स सम पेन्स, एंड ऑब्वियसली इफ देर इज नो पेन देर इज नो गेन, सो इफ यू वॉन्ट टू लिव द वे वी वॉन्ट देन वी नीड टू वर्क हार्डर देन आर पेरेंट्स, बेटर देन प्रीवियस जनरेशंस, और फिर ही हम किसी वक्त किसी कुर्सी पे बैठ के किसी ऑफिस में बैठ के प्राउडली कह सकते हैं कि कल मैं वहाँ था और आज मैं ज़िंदगी में यहाँ तक आ गया।
2: माशाल्लाह जी, वेरी गुड मैसेज दैट यू हैव डिलीवर्ड टू द यूथ, और हमारे यूथ को इस तरह के मैसेजेस की और आप जैसे मोटिवेशनल लोगों की बहुत ज़रूरत है जो पॉजिटिव मोटिवेशन को स्प्रेड कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ अक्सर, बड़ी खुशी होती है देख के, हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई एबिलिटी नहीं है या कहीं थोड़ा इशू आ रहा है उसको मोबिलिटी में फॉर एग्जांपल, या बोलने में इशू आ रहा है, तो वो बड़ा उसको ना उस बात पर शर्मिंदा सा होता है, हालांकि इट्स नॉर्मल फॉर लाइफ। अक्सर औकात होता है कि कोई शख्स अगर गा नहीं सकता तो उसे भी आप उर्दू में अगर देखें तो माजूर ही कहेंगे उसे कि वो गाने से माजूर है भाई, वो नहीं गा सकता। ठीक है, कोई शख्स तेज़ भाग नहीं सकता तो वो तेज़ भागने से माजूर है। अब अगर किसी को मोबिलिटी में, नॉर्मल मोबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ है। तो लोग इसको आमतौर पे बड़ा छुपा के रखते हैं इस तरह की चीज़ों को, स्पेशली अगर बच्चा कोई ऐसा है फैमिली में। अब आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि आपने बकायदा एक टैग अपना रखा है व्हीलचेयर वाला
3: जी।
2: ठीक है, और मैं अक्सर आपके सोशल मीडिया पर देखता हूँ आपने इसी नाम से आप काम करते हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है कि आपने उस चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ किया है अपने एक चीज़ को जो आपकी लाइफ का पार्ट है। तो आप इसको कैसे ट्रांसमिट करते हैं दूसरों तक, क्या वे अडॉप्ट करते हैं उसके लिए कि जो दूसरे लोग हैं जिनको मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं तो उनको आप किस तरह मोटिवेट करते हैं कि वो लाइफ को नॉर्मल लेकर चलें?
3: जी, जैसे आपने बात कही ना कि आप, हमने उसको अपना ब्रांड ही बना लिया व्हीलचेयर वाला।
2: Exactly.
3: क्योंकि आप किसी पहली मुलाकात में किसी महफिल में होते हैं तो सब लोगों को आपका नाम याद नहीं रहता, तो अक्सर इंसान की फिजिकल अपेयरेंस में जो भी कोई चीज़ होती है लोग उससे याद करते हैं कि यार वो काले कोट वाला था या उसने वो ग्लासेस वाला था
2: या बालों वाला था।
3: कम बालों वाला था, कुछ भी। तो व्हीलचेयर का फायदा ये होता है कि व्हीलचेयर वाला याद रहता है सबको। अब इसके भी आगे दो पहलू हैं, अगर इसको मैं नेगेटिव लेना शुरू कर दूं और अपने जैसे बहुत से लोगों में ये नेगेटिविटी फैल जाए कि हमें टैग कर दिया यार व्हीलचेयर के साथ, लेकिन ऑन द अदर साइड व्हीलचेयर वाला जो है वो हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है, इसके हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इसके जो व्यूज़ हैं और इसकी जो रीच है वो अब लोग दूसरे कंट्रीज वाले हमारा हैशटैग इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि डू अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ हैशटैग जिसमें पॉजिटिविटी है, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, कोई आइसोलेशन वाली बात नहीं कर रहे। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे पब्लिक को अवेयरनेस दी जा सकती है या वो जो लाइफ है एक व्हीलचेयर से पहले और व्हीलचेयर के बाद वाली लाइफ में, किस तरह से एक व्हीलचेयर जो है वो एक पूरे इंसान की ज़िंदगी जो है वो उसको चेंज कर सकती है। तो वो व्हीलचेयर दे के उसकी चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती उसके बच्चों में या उनके वालदैन की आंखों में कोई नमी आ जाती, तो हमारी जो सारे दिन की थकान है, ये इतने सालों की मेहनत है, वो उस मुस्कान के साथ जो है वो हम लिंक है और हमारे लिए वो हमारी रूह की गजा है और वही हमारे लिए सब कुछ है और वही चीज़ हमें आगे लेके चलती है। इसी तरह जो हमारी यूथ हमें सुन रही है उसके लिए अभी यही पैगाम है कि आपके सराउंडिंग में जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ है उसको ब्रांड करें, उसको ओन करें। वो आपका इंस्टीट्यूशन है, आपकी फैमिली है, आपके गिर्दोनुमा में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका एरिया है, आपका मुल्क है, इसको आप ऑन नहीं करेंगे तो कोई तो को ऑन करेगा। और देन यू वुड बी इन सिटिंग इन अ पोजीशन के आप कब तक उसको कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो गई या हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो समबडी हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज से आपको जो चीज़ लगती है कि ये मेरी खामी है, उसी को अपना ब्रांड बना लीजिए और वो जो ब्रांड है वो ग्रो करेगा।
2: एग्जैक्टली, वेरी राइटली सेड जी। अपनी हर्डल्स को हमें अपने स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बजाय इसके कि हम ये रोते रहे कि आगे हर्डल आ गया। तो ये हम पर है कि अपनी हर्डल्स को हम कैसे स्टेपिंग स्टोन में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ ही टाइम हुआ है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम जुगनू। हम बात कर रहे हैं जनाब नूरेल अब्बास साहब से। नूरेल साहब, बात हो रही थी व्हीलचेयर्स के हवाले से। आपने बताया कि आप कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कस्टमाइजेशन की व्हीलचेयर में? मैंने तो मतलब पहले हम देखते थे कि जी व्हीलचेयर बनी बनाई गई, किसी को ज़रूरत है उसने ली और यूज़ कर ली। कस्टमाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है?
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोगों को अंडरस्टैंडिंग हम इस तरह से डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं और एक अपने लिए जूता परचेज करते हैं, तो आपने जूता लिया बहुत फैंसी, आपको बहुत पसंद आया, लेकिन आपके साइज़ का नहीं। तो अब क्या होगा, वो जूता आप शायद अगर आपके साइज़ से कम है तो शायद किसी फंक्शन में आप आधा घंटा पहने और आपके पाँव स्वेल कर जाएं। और अगर वो आपके पाँव से बड़ा है तो फिर भी आप उसके पहन के नहीं चल सकते, तो आपके लिए वो वबाले जान बन जाता है। इसी तरह एक जो व्हीलचेयर यूज़र है, जो जिसको हम परमानेंट डिसेबल पर्सन कहते हैं, अफराम बाहम माजूरी, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं है। अब उसने, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के डेली का कोई 10 से 12 घंटे व्हीलचेयर के ऊपर गुजारने हैं, मैंने एजुकेशन हासिल करनी है या मैंने नौकरी करनी है या कारोबार पर जाना है, तो दिस इज़ माई फीट, ये मेरी टांगे हैं, तो ये मेरी टांगों में जो फिट होने वाले जूते हैं वो बिल्कुल मेरे साइज़ के मुताबिक होंगे, तो ही मैं चला सकूंगा। और जिस तरह से शायद आपने भी देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे हम पोस्ट करते हैं, एक बच्चा व्हीलचेयर चला रहा होता है, तो क्या आप बच्चे को अगर बड़ी व्हीलचेयर पे बिठा देंगे तो उसके हाथ ही नहीं पहुंचेंगे? वन थिंग, उसका एक्सेस खत्म हो गया तो वो चला नहीं सकेगा, तो वो फिर डिपेंडेंट रहेगा। एक तो वो डिपेंडेंट रहेगा, दूसरा क्या, दूसरा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। अगर उसके साइज का नहीं है तो उसकी जो स्पाइन है वो टेढ़ी हो जाएगी, और उसका हम्प निकल आएगा बैक पे। अगर वो हम्प निकल आएगा आगे से, वो झुका होगा तो उसके जो रिब्स हैं, उसकी पसलियों से उसके जो लंग्स हैं वो प्रेस हो जाएंगे, तो उसकी ऑक्सीजन इनहेल करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो और भी इसमें कस्टमाइजेशन में कुशंस होते हैं, साइजेस होते हैं, फिर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ में डिफरेंट व्हीलचेयर्स की रिक्वायरमेंट है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो शायद किसी और, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसकी इंजरी एक्सीडेंटल केस है उसमें उसको वो रिक्वायरमेंट ना हो। क्यों? क्योंकि मेरी जिस्म के मुताबिक मेरी व्हीलचेयर मैं अपनों कस्टमाइज, अभी जिस मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ ये ओरिजिनल इस हालत में नहीं थी, इसको मैंने अपनी डेली नीड के मुताबिक, कंफर्ट के मुताबिक मैंने डिज़ाइन किया। अब ये है कि इसमें हम 12-14 घंटे बैठ के काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और फिर अगर वो कंफर्ट लेवल है और मैं व्हीलचेयर को मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, तो फिर देखा देखी दूसरे लोग भी इसको इन्जॉय करते हैं, देखते हैं। अब बच्चों की एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि जब बच्चे को व्हीलचेयर मिलती है ना, उसके लिए घर में कोई चीज़ जैसे कोई खिलौना आ गया, कोई गाड़ी आ गई, ही डजंट नो कि व्हीलचेयर है क्या है, जब तक उसको इंजेक्ट नहीं किया जाएगा दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। किसी बड़े को व्हीलचेयर देते हैं तो सोच में पड़ जाता है कि यार ये मैं इस्तेमाल करूँगा तो मैं और मोहताज हो जाऊँगा, मिसाल के तौर पर। लेकिन इसको इस प्रोस्पेक्टिव में देखिए, आज आप मिसाल के तौर पे ऑफिस में आए तो किस पे आए, किसी बाइक पे आए होंगे या गाड़ी पे आए होंगे या बस पे आए होंगे, किसी ना किसी पहिए के सहारे पे आए। तो हर इंसान किसी ना किसी पहिए का सहारा ले रहा है, तो विच मीन्स कि वो जो पहिए का सहारा है वो बचा क्या रहा है, वो उसका वक्त बचा रहा है, वो उसकी एनर्जी बचा रहा है, और उसकी मंजिल पे पहुंचा कर उसकी वो जो एनर्जीज हैं, कहने को तो अगर नॉन डिसेबल पर्सन की बात करें या जिनको आम अल्फाज में नॉर्मल इंसान कहा जाता है, तो इस हिसाब से तो सबको फिर पैदल आना चाहिए अपने ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, अपनी कारोबारी जगहों पे। लेकिन वो लोग व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको व्हीलचेयर नहीं, उसको बाइक कहा जाता है, गाड़ी कहा जाता है, हमारी चेयर के साथ व्हील लग जाती है, इसको व्हीलचेयर कहा जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू टेक दी नेगेटिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मिथ्स, जो कि मिथ्स हैं और ये कहीं पर रिटर्न नहीं है, बस लोगों ने सोचा और नसल दर नसल आते रहा। तो कस्टमाइज व्हीलचेयर से लाइफ चेंजिंग है। अब हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं कि जो जैसे जैसे उम्रें बढ़ी उनके व्हीलचेयर के साइज़ बढ़े, तो हमारे पास उनके बचपन की तस्वीर भी है, स्कूल जाते हुए भी और कॉलेज जाते हुए भी हैं तस्वीरें।
1: राइट। अच्छा, क्या ऐसा कोई फीचर है इन व्हीलचेयर में, जैसे आपने बताया कि बचपन से ज़ाहिर बंदा अगर व्हीलचेयर पे है तो अच्छा से जैसे उसका साइज़ बढ़ेगा उसको बड़ी व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी, कस्टमाइजेशन डिफरेंट करनी पड़ेगी उसकी, कोई ऐसा स्टैंडर्ड कोई डिज़ाइन है कि जिसको आप चेंजेस करके फॉर लाइफ एक बंदे के लिए यूज़ कर सकें, या आपको विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज करनी पड़ती है व्हीलचेयर्स, क्या होता है इसमें?
2: इसका सर ऐसे ही होता है जैसे आप बचपन में बच्चों के कपड़े बनाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो फिर टेलर के पास जाते हैं, या हमारी खवातीन हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, ठीक है, तो उन पर्टिकुलर केस में वो क्या कहते हैं, वो टेलर्स के पास जाते हैं और वो बचपन से अपने घर में शादी करके अगले घर में तो कस्टमाइजेशन करवाई जाती है। तो वो कोई ऐसा यूनिवर्सल डिज़ाइन नहीं है व्हीलचेयर का, अगेन, क्योंकि ये एक कस्टमाइज नीड बेस है, मतलब एक चेयर है और उस चेयर पे अगर मिसाल के तौर पे एक आईटी वाला एक्सपर्ट बनता है, बंदा बैठता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठता है, और उसको पता कि मैंने अगेन 10 से 12 घंटे मैंने इसके ऊपर स्पेंड करने, तो क्या हुआ, कस्टमाइज किस्म की चेयर्स आना शुरू होगी मार्केट में, जिसको आप कहते हैं डेवलपर चेयर्स होती हैं, सही है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल लें तो जैसे हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहाँ पे 4x4 व्हील की ज़रूरत आ जाती है। अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार नॉर्दर्न एरिया में नहीं चल सकती, विच मीन्स कि हर जगह इम्पॉर्टेंट है। अगर हर इंसान जो उसको प्रॉपर जगह दी जाए उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के, वो परफॉर्म करेगा। तो अगर हमारी स्पोर्ट्स कार पहाड़ी इलाकों में जाएगी तो नहीं चलेगी, बेकार हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो व्हीलचेयर की इम्पॉर्टेंट जो है, और इस तरह की और भी मोबिलिटी डिवाइसेज हैं, वॉकर है, हमारे हेयरिंग एड है, हमारे वाइट केन्स हैं, इसी तरह डिफरेंट अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की तरफ जाएं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर इज़ वेरी कॉमन, स्कूटीज़ हैं, इसके अलावा जो रेगुलर बैटरीज के ऊपर डिफरेंट ऑर्गन्स जब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो वो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के साथ भी चलें। तो वो आर्टिफिशियल ऑर्गन क्या है, वो आपके उस ऑर्गन की जगह काम कर रहा है, दिल की जगह काम कर रहा है, आपके गुर्दे की जगह काम कर रहा है। तो हमारी ज़िंदगी में भी हम बहुत से काम डिपेंडेंट हैं, लेकिन सुबह उठते हैं हमें नज़र आ रहा होता है, कुछ लोग उठते हैं उनको नज़र नहीं आ रहा होता, वो अपने हाथों से दुनिया को देखना शुरू करते हैं, अपने कानों से दुनिया को देखना शुरू करते हैं। तो हर इंसान को इक्वल एक तरह की अगर ज़िंदगी मिल जाए तो ज़िंदगी बोर हो जाएगी हमारी नज़र में। इट्स अ ब्लेसिंग कि अल्लाह ताला ने सबको मुख्तलिफ रखा और कहा कि अपनी अपनी ज़िंदगी को तलाश करें।
1: एग्जैक्टली जी, यही हमें ज़रूरत है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कि अगर कोई हमसे डिफरेंट है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। नॉर्मली हम लाइफ में अपने से डिफरेंट लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते और इसी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो बात मज़ीद करेंगे इस हवाले से और हम एग्जोस्केलेटन्स की बात भी करेंगे, कुछ इंटरनेशनली इस पर भी काम हो रहा है और उसमें काफ़ी हद तक जो फिज़िकल इम्पेयरमेंट है उसके हवाले से हेल्प मिलती है। कितना सक्सेसफुल है वो नोएल हमें बताएंगे आफ्टर द शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। जी सुनते रहिए 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: After the short musical break, हम बात कर रहे हैं नूरे लबास साहब से, जो कि हमारी एक सक्सेस स्टोरी है यूसीपी की, और माशाल्लाह बहुत एक्टिव वॉलंटियर भी रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह लोगों की भलाई के लिए बहुत काम कर रहे हैं। नूरे साहब, बात हम कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रेक कि व्हील चेयर्स के अलावा और बाकी टूल्स के अलावा

0: कुछ बड़े अरसे से रिसर्च वर्क हो रहा है उस पर, बड़ी R&D हो रही है कि हम कोई एक्सोस्केलेटन बना सकें उन लोगों की हेल्प के लिए जो जिनका लोअर पोर्शन जो काम नहीं करता, या उनको सपोर्ट की ज़रूरत है लोअर पोर्शन में, या कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोअर पोर्शन टोटली उनका अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो किस हद तक कामयाब हैं, क्या उसमें कोई सक्सेस मिली है अभी तक?
1: जी बिल्कुल, ऐसा है रोबोटिक साइंस के अंदर दुनिया में जो कल्चर होते हैं वहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग रहा करते हैं तो फैमिली मेम्बर्स तो अवेलेबल नहीं होते, तो वो ज़रूरत इजाद की माँ बनती है। और अगर आप दुनिया में टेक्नोलॉजी देखें और उसको लिंक करें डिसेबिलिटी के साथ, तो जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है वो डिसेबिलिटी के लिए होती है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात होगी, मिसाल के तौर पे पहले हमारे पास बटनों वाले फ़ोन हुआ करते थे, तो अगर आप इसको डिसेबिलिटी के साथ लिंक करें तो जो लोग बटन वाला प्रेस नहीं कर सकते, टच मोबाइल आ गए, वॉइस कमांड जो है वो भी इसी की एक एडवांसमेंट है। तो जहाँ जहाँ पे डिसेबिलिटी आती है उसकी वजह से एडवांसमेंट आती है, और वहाँ से IT में और दूसरे रोबोटिक साइंस में तरक्की होती है। अब मिसाल के तौर पे दुनिया में तजर्बा हो चुका है रोबोटिक लिबास जिसे कहा जाता है, तो एक आप पूरा रोबोट जो है अपनी बॉडी के ऊपर पहन लेते हैं, जेब तन करते हैं, और उससे क्या होता है आप रिमोट कंट्रोल से एक फुली पैरालाइज शख्स जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाता है, वॉक अराउंड कर सकता है, किचन में जा सकता है, डिफरेंट जो अपने घर में डिफरेंट एक्सेस। लेकिन उसमें ऑब्वियसली R&D की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, और जहाँ पे किसी रोबोटिक साइंस में जहाँ पे फैसिलिटेशन है वहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशंस भी देखते हैं कि इसके इस्तेमाल से कहीं उस शख्स को मज़ीद नुकसान ना हो जाए, उसके जिस्म को या उसके सराउंडिंग में कोई ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स ना हो, ताकि वो आम ऑर्डिनरी एग्जांपल अगर आप लें वो लेने के देने पड़ जाएं। तो इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए रोबोटिक साइंस में सक्सेसफुल तजर्बात हो चुके हुए हैं, और वो उनकी सक्सेस स्टोरीज भी अगर आप लोग जाइए और ऑनलाइन सर्च करें तो रोबोटिक आप ड्रेस कह सकते हैं या रोबोटिक फॉर पैरालाइज पर्सन डिवाइस कह सकते हैं, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। यस, टाइम वुड कम कि ये चीज़ जो आज हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक वक्त आएगा मे बी विद इन 10 ईयर्स, विद इन 20 ईयर्स, बहुत से लोग जैसे हमने बात की कि शायद हम अपने बुज़ुर्गों के लिए वो चीज़ ख़रीदना शुरू कर दें। हमने जैसे अभी ब्रेक में बात की कि अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह की चीज़ें खरीदना शुरू कर दें कि जो उनके बुढ़ापे में एज असिस्टिव डिवाइस उनको काम आ जाए, रादर कि हम उनके लिए प्रॉपर्टीज़ बना लें, चीज़ें बना लें, लेकिन वो बेड बिडन रहें, हम ऐसा बेड ना उनके लिए प्रोवाइड कर सकें, या लेट्स से ऐसी व्हीलचेयर अवेलेबल ना करवा सकें कि वो उनकी मोबिलिटी इंश्योर ना हो। हम आज के दौर में रोबोटिक को हमने किया हुआ है कि हमारे पास अगर हम पे कर सकते हैं तो हमने एक बंदा खाना बनाने के लिए रखा हुआ है, एक चौकीदार है घर में सफाई करने के लिए, तो दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी हुई है, वो ये सारे काम रोबोट से करवाते हैं और रोबोट का जो कंट्रोल है वो इंसान के हाथ में, तो इंसान ज़िंदगी में ज़िंदगी को कंट्रोल ही करना चाहता है। तो रोबोटिक साइंस से क्या होता है, साइकोलॉजिकली आप वो चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाते हैं जो कभी आपने ख्वाहिश की। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक शख्स है वो चाहता था कि वो अपने कदम पर एक दफ़ा खड़ा होकर फ़ोटो ले ले, तो किसी आम सुनने वाले के लिए इट वुड बी नॉट बी अ बिग डील, कैसे यार ये कौन सी बड़ी बात है, शीशे के सामने लोग सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, तो लेकिन उस शख्स के लिए वो ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा ख्वाब हो। तो साइंस से तरक्की मिलती है, और जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग इस फील्ड के मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो अगर वो इस तरह की एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो प्लीज़ इसको एक्सप्लोर करें, इसमें भी एंटरप्रेन्योरियल आ जाती हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं।
0: तो सब अब वापस आते हैं ज़रा अपने पाकिस्तानी सिनेरियो में, इंटरनेशनल से हटके थोड़ा सा इंटरनेशनल की बात हमने भी की, तो हमारे यहाँ किस तरह के राइट्स और किस तरह के लॉज अवेलेबल हैं ऐसे लोगों के लिए जो किसी ना किसी हवाले से डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं? क्या एक्सेप्टेंस की हमने बात की शुरू में कि एक्सेप्टेंस हमारे माशरे में बहुत मुश्किल है अपने से डिफरेंट बंदे की, तो क्या जॉब्स पे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे लोगों को जिनका फिजिकल मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो?
1: अच्छा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी लंबा टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मैं इसे समराइज़ करता हूँ इस तरह से कि जो राइट बेस अप्रोच होती है उसमें इंसान थकते नहीं है। मैं अगर एक प्राइवेट बंदे के पास जाऊँगा, उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रैम बना दें सर, प्लीज़ बना दें, मैं 10 दफ़ा जाऊँगा, शायद वो सिंपथेटिक हो के या एम्पथी के मोड में आके वो बना दे। मैं दूसरे के पास जाता हूँ, कहता मेरे पास बजट नहीं, मेरे पास स्पेस नहीं है। अच्छा, जब ये बात बन जाएगी लॉ की, जब कानून का हिस्सा बन जाएगा और उसको पता है कि मैं कमर्शियल एरिया में हूँ या मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द एक्सेस टू एवरी वन, अब वो जो पर्टिकुलर जो रैंप है वो खाली व्हीलचेयर यूजर तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, जिनके जॉइंट्स का इशू है या प्रेग्नेंट खवातीन हैं या बच्चे हैं या जो लोग हैं उसको ऊपर सामान भी तो लेके जाते हैं ना अपने रेस्टोरेंट का या बाकी चीजों के लिए। तो इसका फैसिलिटेशन जो राइट बेस अप्रोच है उसका फायदा ये होता है कि वो नस्ल दर नस्ल फायदा देती है। राइट बेस अप्रोच में हमने मिसाल के तौर पर 10 साल पहले हमारे एक्टिविस्ट हैं मुख्तलिफ फॉरम्स पे गए तो उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि एक्सेसिबल बसेस लेके आए। आज पाकिस्तान में स्पीडो बस जो है वो एक्सेसिबल है, अगर कोई शख्स का तजर्बा नहीं है तो वो जाए स्पीडो बस इस्तेमाल करे, उसके अंदर रैंप होती है, ड्राइवर ट्रेन होता है, ड्राइवर उतर के आता है, वो रैंप पे आपको हेल्प करता है, जो भी व्हीलचेयर यूज़र है उसको बैठाता है, फिर वापस अपनी ड्राइविंग सीट पे जाता है और फिर आगे स्टॉप पे जाता है और उस बस के ऊपर लोगो बना होता है। इसका देखे देखिए पेशावर में आ गए, इसका देखे देखिए कराची में आ गए। ऑरेंज ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटेशन है। तो क्या हुआ कि जब फैसिलिटेशन आई तो लोग बाहर निकले, बाहर निकले तो अवेयरनेस और बढ़ गई। और अगर कानून साजी की बात की जाए तो हमारा फेडरल में है वो एम्पावरमेंट फॉर दी पर्सन विद डिसेबिलिटी ICT के नाम से है, एक्ट है। इसी तरह सिंध में है, इसी तरह क्योंकि हमारा सूबाई सिस्टम है अब तो हर सूबे का अलग है, अभी पंजाब में चल रहा है, वी होप कि वो भी जल्दी एक्सेप्ट हो जाए। और इसके अलावा सिंध में तो मिनिस्ट्री भी हो चुकी हुई है पर्सन विद डिसेबिलिटी की, तो बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग इसके अनअवेयर्ड हैं। इसी तरह गिलगित बल्किस्तान वहाँ पर अप्रूव हो चुका, बलूचिस्तान में अप्रूव हो चुका हुआ है ये लॉ, पंजाब और KPK में इन प्रोसेस है, वहाँ पे भी हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप और मेरी जो एफर्ट हैं एज अ वॉलंटियर या एज ए एक्टिविस्ट वो रिड्यूस हो जाएंगे, हम नए महाज पे निकलेंगे, नई मंजिल, नए टारगेट्स बनाएंगे। और ये जब राइट्स मिल जाएंगे तो किसी पेरेंट्स को किसी स्कूल में जाते हुए ये हेजिटेशन नहीं होगी कि ये मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे, जो कि मैंने फेस किया, बहुत से लोगों ने फेस किया कि आम रेगुलर स्कूल में तो एडमिशन ही नहीं देते। तो वो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू जॉब, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो राइट बेस अप्रोच में सबके लिए कानून के मुताबिक चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, किसी के मूड स्विंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और फिर ये जो कम्युनिटी है वो तरक्की की तरफ जा रही होती है, वो पहले इकोनॉमी पे बर्डन होते हैं अब वो कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो राइट बेस अप्रोच जो है ना वो एक्चुअल लॉन्ग टर्म होती है।
0: वेरी राइट जी, राइट बेस अप्रोच के हवाले से अगर हम देखें तो वाकई बहुत सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं और उसकी बेस पर लेजिस्लेशन भी हो सकती है, और अगर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर तो वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसको भी वो डिमांड हो, जिसको भी ज़रूरत हो, उसको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं अगर लेजिस्लेशन हो जाए तो। लेजिस्लेशन हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों पर है भी और बहुत सी खामियाँ भी हैं, इसमें बहुत सी कमियाँ भी हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे नौरील साहब से आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, हम फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं भी बढ़ूंगा डॉक्टर दिलावर हुसैन की तरफ। डॉक्टर साहब, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं?
2: जी सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो डिपार्टमेंट जूलॉजी है अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी UCB जो काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा BS जूलॉजी प्रोग्राम चल रहा है, 4 ईयर्स का जो प्रोग्राम है। इसके अलावा हमारा MPhil जूलॉजी का 2 ईयर का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है हमारा, उसकी इवनिंग के अंदर क्लासेज हैं। उसके अलावा हमने जो PhD के लिए भी वर्किंग पेपर जो तैयार किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हम HEC को भेजेंगे फॉर दी अप्रूवल ऑफ PhD इन जूलॉजी। एडिशनली हमने 1-2 डिग्री प्रोग्राम उनके ऊपर और वर्किंग जो है वो की हुई है, फॉर एग्जांपल BS इन पब्लिक हेल्थ के ऊपर एंड MS इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि आपको पता, जैसे मैडम भी कह रही थी, आगे ये जो ज़माना आ रहा है, जो करंटली हम फेसिंग कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे UN ने अपने गोल सेट किए हैं, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो MS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो अपनी वर्किंग है वो मुकम्मल की हुई है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसको किसी फॉर्म से, मे बी जूलॉजी और फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट से, इसको भी ऑफर करेंगे इंशाल्लाह।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नागरा। इसी सवाल को आपकी तरफ बढ़ाऊंगा, आप भी बताएंगी मजीद कुछ प्रोग्राम्स की, मजीद आप इलूसिडेट करेंगी, इनको मजीद फैलाएंगी।
3: जी सर, जैसे BS जूलॉजी प्रोग्राम की बात हुई है, तो ये हमारा 8 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को एनिमल बिहेवियर, एनिमल डाइवर्सिटी, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, अलॉन्ग विद दैट माइक्रोबायोलॉजी एंड डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, जिसमें इकोनॉमिक जूलॉजी भी आ जाती है, इसमें इन्वायरमेंटल साइंसेज भी आ जाती है, वाइल्ड लाइफ भी है और इकोलॉजी है। तो ये सब प्रोग्राम्स, ये सब सब्जेक्ट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिकली एनिमल्स। लेकिन उसमें मैं ये ऐड करती चलूँ कि एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेटा, तो हम एज रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हम ह्यूमन बींग्स को ही डिस्कस करते हैं, और जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे फिजियोलॉजी को पर्टिकुलरली अगर ले लें, तो हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी है, एक्सक्रीटरी, व्हाटएवर, जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारा जो रोल है, रोल मॉडल है उसके अंदर, वो हम एक ह्यूमन बींग के ही सारे सिस्टम को डिस्कस करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दैट MPhil जो हमारा प्रोग्राम इवनिंग में चल रहा है, तो उसके अंदर जो हमारे स्पेशलाइजेशन वाले प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर हो रहे हैं, जिसमें बच्चे रिसर्च तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका कोर्स वर्क है वो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में दे हैव टू कम्प्लीट दैट, और उस कोर्स वर्क में उनके जैसे एपिडेमियोलॉजी है, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल साइंसेज है, एडवांस कैंसर बायोलॉजी है, एडवांस माइक्रोबायोलॉजी है एंड डिफरेंट अदर टेक्निक्स और सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं। और जब वो रिसर्च अपनी करते हैं, तो दे डिज़ाइन देयर प्रोजेक्ट्स इन सच अ वे कि हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके जो एरियाज हैं स्पेशलाइजेशन के, वो उनके साथ रिलेट करते हैं, एंड दिस इज़ देयर ओन चॉइस। स्टूडेंट अपनी चॉइस के साथ अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं, एंड UCP और उसके साथ साथ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उनको फुली सपोर्ट करता है फॉर द रिसर्च वर्क, फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच दे आर रिक्वायरिंग।
1: थैंक यू वेरी मच मैम निमरा अफजल। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछूंगा, इन्होंने मुझे एक और सवाल दे दिया, ज़िमनी सवाल निकल आया कि इन्होंने कहा स्पेशलाइजेशन, पहले अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइएगा और किस तरीके से आप अपने MPhil के बच्चों को अपने फील्ड में लेके आगे चलती हैं, ताकि जब वो बाहर जाएं दुनिया में तो वो उड़ना सीख जाएं।
4: जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल जो है पूछा है। सो मैं सर अगर अपनी बात करूँ, तो आई एम स्पेशलाइज्ड इन एनवायरमेंटल हेल्थ, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ, तो आपको पता है कि जो एनवायरमेंट में स्पेसिफिकली एयर, सॉइल और वाटर आर द मेन कंपोनेंट्स, और इसके लिए फिर मेरा जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, सो आई वर्क फॉर द एयर, फॉर द सॉइल एंड फॉर द वाटर। सो व्हाट वी एक्चुअली, मेरे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मेरे साथ रिसर्च करते हैं, तो जैसे अभी मैं आपको चंद एक अपने रिसर्च टॉपिक्स ज़रा आम जुबान में बताऊँ जो आम फहम हो, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स टॉक्सिकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको पता है कि प्लास्टिक्स का हमारा यूजेज का बहुत मसला चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन भी किया है, लोगों को सेंसिटाइज करना है कि इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं।
1: रिसाइक्लिंग भी उसमें आती है?
4: जी सर, उसके लिए हम 3 आर्स की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज, रीयूज एंड रिसाइकल. सो द फर्स्ट थिंग इज रिड्यूस. तो 3 आवर्स में जब रिड्यूस आ रहा है तो हमें इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है. अब कहीं अगर हम बात करें कहाँ जोलॉजी लोग समझते हैं और कहाँ कहते हैं प्लास्टिक की बात हो रही है, लेकिन सर ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि अभी जैसे ये प्लास्टिक जब आपको पता है कि टूट फूट का शिकार नहीं होते, दे डू नॉट डीग्रेड इन नॉर्मल कंडीशंस. सो जब ओवर द ईयर्स, हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगर आपका प्लास्टिक रिटेन करता है और अगर उसकी एब्रेशन हो भी रही है तो वो इतनी स्लो है कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स में डिसोसिएट हो जाता है और फिर जब वो वाटर बॉडीज से एनिमल्स तक पहुँचता है तो आपकी फ़िश के अंदर बायोअक्यूमुलेट हो रहा है. मैं टर्म्स कुछ ऐसी यूज़ करूँगी जो आम फहम हो कि अगर फ़िश के अंदर, या हम अब देखेंगे पाकिस्तान में सी फूड का कितना अब हम लोग जाते हैं, लोग खाते और पसंद करते हैं, जब ये सारी एक्युमुलेशन फिश में आपके लॉबस्टर्स में लेस से हो रही है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो रही हैं. उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी बॉडी आ रही है और फिर आपकी फंक्शनिंग बॉडी की जो है वो अफेक्ट हो रही है, फ्रॉम लिवर फंक्शन टू द रीनल फंक्शन, जिसमें हम किडनीज की बात करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है और हम इसको एनिमल मॉडल्स पर करके देखते हैं. जैसे मेरे स्टूडेंट्स इसको डिफरेंट एनिमल मॉडल्स पर करके देखते हैं और फिर हम उनके इफेक्ट्स देख के रेजोनेट करना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पर भी है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. अगर आप फिश फूड कंज्यूम कर रहे हैं या अगर फिश नहीं, आप कोई भी सी फूड खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यू आर एक्सपोज टू दैट माइक्रोप्लास्टिक इम्पैक्ट. और हमें ये आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में मेरे बाबा भी बताते हैं कि कपड़े के थैले हम लोग लेके चलते थे एंड देट वॉज नॉट अ स्टेटस सिम्बल. एक थैला 1000 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा होता था, धुलता था, आपका इन्वायरमेंट भी महफूज था. आज हम प्लास्टिक को चाहे कन्वीनियंटली यूज़ करने के चक्कर में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं. सो वट वी आर trying to actually assess the repercussions aur phir logon ko sensitize karna to reduce the use of plastic and go for the other alternatives whatever we can have. So ye ek ye term hai. Kuch hum smoke pe mere students kaam kar rahe hain, aapko pata hai this is one of the most important issue. To aksar log kehte hain ki ji zoology aur smoke, to the thing is jaise meri zoology ek bahut diverse sir branch hai. So when I talk about environmental health to hum smoke ko bhi dekhte hain ki smoke kis tarah se affect kar raha hai aur उसके अगेन हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स ये भी लगाते हैं कि एक एनिमल मॉडल को एक्सपोज करके देखें कि स्मोक के क्या इम्पैक्ट्स हैं. सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली वर्क, दिस इज़ माई स्पेशलाइजेशन एंड आई विल लीव इट टू रेस्ट ऑफ माई कोलीग्स टू यू नो टू डिस्कस देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन.
1: थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी डिटेल्ड ब्रीफिंग. यू पुट एन पर्सन लाइक मी हु इज अ यू नो अ नोविस इन दिस फील्ड वाइजर देन बिफोर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्रीफ. I mean discussion and elucidation and explanation. Dr. Saab, Dr. Dilawar Hussain, आपसे भी यही सवाल करूंगा क्योंकि बात से बात चल पड़ी और दीप से दीप जलते हैं. तो आप भी अपनी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन बताइएगा स्टूडेंट्स के बारे में और उसके बाद ही आपसे ज़िमनी सवाल भी होगा. अपनी लैब्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, 2 से 3 मिनट आपके पास है.
2: जी सर, बहुत शुक्रिया सर. सबसे पहले मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बात करूँ तो वह एक्वा कल्चर एंड फिशरीज़ है, और अगर इसको मैं थोड़ा नैरो रेंज में लेके बात करूँ तो फ़िश न्यूट्रिशन के ऊपर और टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर मेरे जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं. आपको पता है जैसे मैडम बता रही थी कि अभी जो लोग हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड सी फूड की तरफ, जो कि डैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो उसके अंदर फिर उसकी प्रोडक्शन में कुछ मसाइल आते हैं, जैसे डिजीज़ हैं उसको रजिस्ट करने के लिए. तो उस डिज़ीज़ से कोप करने के लिए फिर उसके ऊपर मेरे जो स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं कि फ़िश के अंदर जो डिज़ीज़ है उसको किस तरह से कम किया जा सके, या उसकी जो ग्रोथ है उसको कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं. तो इसके लिए डिफरेंट हम जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट हैं उनको यूज़ कर रहे हैं फीड के अंदर, और लैब के अंदर ट्रायल लगा के देखते हैं कि वो फ़िश के अंदर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कितनी आई है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप. इसी तरह से कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं फीड के अंदर, ताकि हम ये देख सकें कि वो जो ऑयल्स हैं वो किस तरह से जो फ़िश के इम्यून सिस्टम है उसको वो बूस्ट अप करते हैं, ताकि वो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस दे सकें और फ़िश की जो ग्रोथ है या जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हम उससे ले सकें. उसके बाद सर दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया लैब्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6-7 वेल एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं, और वो तमाम स्टूडेंट उसके लिए वो तमाम मौके हैं कि वो किसी भी लैब में जाके ओपनली काम कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी अपनी जूलॉजी की भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिपेंडेंट लेबॉरेटरी है, जिसके अंदर हमारे जो इस वक्त के इंस्ट्रूमेंट हैं जो चाहिए वो सारे के सारे मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक दो का आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा. जैसे हमारे पास वहाँ पे जूलॉजी लैब में PCR मशीन है, जिसके ऊपर हमारे MPhil के और इवन के PhD के स्टूडेंट हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, वो आके वर्किंग कर रहे हैं. سینٹریفیوگیشن مشین ہمارے اوپر ہمارے زوالوجی لیب میں جس کے اوپر اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں. اس طرح سے جیل ڈاگ ایک آپریٹس ہے, ایگروز جیل وغیرہ جب اسٹوڈنٹ رن کرتے ہیں اس کے اوپر. انکیوبیٹر ہمارے لیب کے اندر موجود ہے, مائکرو ویو اوون وہاں پہ موجود ہے, فلیم فوٹو میٹر ہمارے لیب کے اندر زوالوجی لیب کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ مائنس 80 کا فریزر جو پورے یو سی پی میں صرف ہماری لیب میں زوالوجی میں موجود ہے, جس کے اندر ہم جو اگر لانگ ٹرم کے لیے ہمارے سیمپلس کو سیو کرنا ہو یا کوئی کیمیکل کو رکھنا ہو تو وہاں پہ ہم اس کو پریزرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایڈیشنلی اینیمل ہاؤس کی بھی فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے, تو ڈاکٹر نمرا اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریف کریں.
1: بہت شکریہ. اچھا کہ آپ نے, کیونکہ وہ ان کا فیلڈ آف انٹرسٹ ہے, انہیں پہ کروں گا. لیکن آپ جانتے ہیں طوالت بعض اوقات بوریت کا باعث بنتی ہے, اس لیے ہم جائیں گے ایک اور بریک کی طرف. کہیں مچائیے گا, سنتے رہیے FM 92.5.

0: रहेगी और वो चेंज होती रहेगी और डिफरेंट मोड में आती रहेगी।
1: दोनों तरफ से रेजिलियंस का मामला
0: है। वो हमने पढ़ा है साइंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हम चाहते हैं कि फिटेस्ट हम रहें, क्योंकि अगर रहना है तो ये मैनेज तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए सर, फ्रॉम द पेस्ट मैनेजमेंट, जिस तरह अभी हमने जीरो हंगर की बात की, और फिर एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू आ रहा है,
1: ये भी एसडीजी गोल में से एक गोल
0: है। जी बिल्कुल। तो अब जब हम बात क्लाइमेट चेंज की करते हैं, जिसको दुनिया पहले मानने को तैयार नहीं थी, और आज हम उसके, जिसे कहते हैं, रिपरकशंस देख रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स देख रहे हैं। हमारे जो सीजन में आपके बारिशों के पैटर्न है, रेन का सीजन है, या अभी लाहौर में या पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो मेजर अफेक्टेड सिटीज है ड्यू टू पोल्यूशन, और फिर इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, तो सर्वाइवल तो हमारा मुश्किल हो ही रहा है। तो जूलॉजी इस कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट है। आपको जब अभी हमारे माशाल्लाह सर, जैसे आपका ताल्लुक फिजिक्स से है, तो हम इंटरडिसिप्लिनरी काम भी कर रहे हैं, जहां हम जो जूलॉजी के लोग हैं वो एनिमल इंट्रैक्शंस बताते हैं, तो मैथ्स वाले उस पर मॉडलिंग करते हैं, फिजिक्स वाले उस पर उन जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उन पर डिटेल्ड हमें ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वी कैन मेक अ comprehensive project to, you know, to cope with the problem we are facing in this world. Yes, and move ahead. So this was particularly very at a very small scale when we talk about 90s, when the people were doing research. मैं अपनी दुनिया में थी, zoology वाले अपनी दुनिया में थे, या physics वाले अपनी दुनिया में थे। आज हम ये जान चुके हैं that we have to work in collaboration,
1: not in isolation.
0: So zoology और specifically UCP में faculty of science and technology की बात करें, तो we are now open to work together to actually provide a comprehensive solution of the problems we are facing. और वो प्रॉब्लम्स तो वही हैं। तो हमारी ये जंग ख़त्म हो गई है कि कौन बेहतर है, हमें पता है कि सबकी ज़रूरत है और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है।
1: फ्यू वर्ड्स ऑन योर एनिमल।
0: जी, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल मॉडल्स, तो एनिमल मॉडल इस्तेमाल करने के लिए एक तो सबसे पहले हमारे पास एक कमेटी है कि हमारा एक पूरा एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रक्चर है, वे वी पास द साइनॉप्सिस, जो आप रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारा एक एथिकल रिव्यू बोर्ड है, क्योंकि एनिमल्स को बगैर किसी एक प्लान प्रोग्राम सिनेरियो के आप नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू इज़ के पहले तो एक आपका साइनॉप्सिस एक प्रोसेस से गुजरता है कि आपको उस पर एनिमल मॉडल लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी जैसे हमारी जब उस प्रोसेस से गुजर आता है प्रपोजल, देन वी हैव अ एनिमल हाउस फैसिलिटी वेयर वी आर वेरी मच विजिलेंट अबाउट द नंबर ऑफ एनिमल्स बीइंग यूज्ड, बिकॉज देयर आर एथिकल कंसिडरेशंस व्हिच वी कीप इन माइंड बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रायल, एंड फॉर दैट ट्रायल वी हैव एन कॉम्प्रीहेंसिव फैसिलिटी नॉन एज एनिमल हाउस, और वो एनिमल हाउस यूसीपी के फार्मेसी स्कूल भी यूज़ कर रहा है, जूलॉजी के लोग भी यूज़ कर रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज़ एन ओपन हाउस फैसिलिटी वेयर यू हैव टू फर्स्टली गो थ्रू द एथिकल रिव्यू बोर्ड एंड देन यू कैन हाउस योर एनिमल्स इन द एनिमल फैसिलिटी। उसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, माइस हैं, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, उनकी हाउसिंग की जाती है, एंड द स्टूडेंट्स एक्चुअली आर इन चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल हाउस। और उसमें हमारी, सॉरी मैं भूल गई, फिश भी हम लोग वहाँ पर, हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंसिव सेट where the students do the animal trial including the fish. अब उसमें आ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्योंकि उसको हाउस कर रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो एनिमल रेयरिंग कर रहे होते हैं, एंड देन दे आर डूइंग इट कंसिडरिंग द एथिकल गाइडलाइंस। तो उस पर हम अपना लेट्स से कि अगर कोई प्लूटेंट है उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, या यूजेज है, जैसे अभी मैडम ने हमें मेप्राजोल की बात की, तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये एक दवाई खा लेते हैं कैप्सूल खाने से पहले, तो इसकी क्या रिपरकशंस हैं। सो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं ना रिसर्च, वी आर वर्किंग ऑन द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, सो दैट कि हम जो रिसर्च करवाएं उसकी एप्लीकेशन हो आपके रियल वर्ल्ड में, और हमारे मसले जो हैं वो इस हकीकी ज़मीन पे वही हल हो।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर निमरा अफजल, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिव तरीके से बयान किया अपने एनिमल हाउस को। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम एक वक्फा की तरफ, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक। हम फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं और मैं भी बढ़ूंगा डॉक्टर दिलावर हुसैन की तरफ। डॉक्टर बताइएगा, अपने स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से आइंदा आने वाले जमाने के लिए फॉर द फ्यूचर तैयार करते हैं? सेमिनार्स, विजिट्स, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंसेस, आप बताइए इस बारे में।
2: तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट जूलॉजी में रेगुलरली सेमिनार जो वर्कशॉप स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और आपको पता है ये जो सेमिनार और ये जो वर्कशॉप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है स्टूडेंट की लर्निंग के अंदर, उनकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर, उनके न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, उनकी कैरियर रेडीनेस के लिए, उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हम ईयरली और सीरीज़ ऑफ सेमिनार हमने अरेंज करते हैं, उसमें कुछ को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे नंबर वन के ऊपर हम हर साल वर्ल्ड फिशरीज़ डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके अंदर हमारी एक पूरी एक फुल डे की एक्टिविटी होती है, जिसके अंदर हम पहले स्टार्ट करते हैं एक अवेयरनेस वॉक के साथ, और उसके बाद हम जो है वो स्पीकर को बुलाते हैं फ्राम दी रैली रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, जैसे पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से हम एक स्पीकर को बुलाते हैं, ताकि वो स्टूडेंट को जो है वो जो करंट इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं एक्वाकल्चर और फिशरीज़ के ऊपर, उसके ऊपर उनको टॉक दे सके। उसके बाद दूसरा, हम वर्ल्ड फिशरीज़ डे को भी सेलिब्रेट करते हैं ईयरली, उसके अंदर भी उसी तरह से हम डिपार्टमेंट फिशरीज से लोगों को बुलाते हैं एज इनवाइटेड स्पीकर, और जो इस वक्त की टॉपिक्स हैं जैसे GIS की मैपिंग है, उसके ऊपर बच्चों को हम जो वर्कशॉप्स हैं, जो सेमिनार वो डिलीवर करवाते हैं। इसके अलावा हमारी एक बहुत सी फेमस टैक्सीडर्मी की वर्कशॉप हमने एक सीरीज़ शुरू की है, जो कि हम हर साल जो है इसको स्टार्ट करते हैं, बच्चे इसको पूरा सीखते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास जो एनिमल्स हैं, ख़ास ऊपर जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको स्टफिंग सिखाते हैं कि कैसे उसको हमने प्रिजर्व करना है फॉर रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपने हमने घर में रखने के लिए, या एज ए शो के पीस के तौर पर, कि वो एनिमल जो बेचारे डेड हो गए, बजाय इसके कि वो हम उसको इन्वायरमेंट को ख़राब होने दें, उनके फिर हम क्या करते हैं, स्टफिंग करते हैं। तो ये पूरी एक साइंस है जिसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं। इसके अलावा हम एपिकल्चर के ऊपर, हनी बी फार्मिंग के ऊपर हमारी वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, सेरीकल्चर के ऊपर हमारी वर्कशॉप है वो हम करवाते हैं, लैग कल्चर के ऊपर लास्ट ईयर हमने एक जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट करवाई थी। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट, हम उनको एक पूरा एक ओवरव्यू देते हैं कि सिर्फ क्लासरूम तक उनको महदूद नहीं रखते, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हम उनको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया। अभी हम तकरीबन बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। डॉक्टर शाजिया नागरा से पूछूंगा, फिर उसके बाद आखिरी सवाल करूंगा डॉक्टर निमरा अफजल से। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शाजिया नागरा साहब, आपसे सवाल है कि व्हाई जूलॉजी एट UCP, व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर डिपार्टमेंट?
3: थैंक यू सर। जैसे अगर हम बात करें कि वाई जूलॉजी एट UCP, तो व्हाट आई कैन ऐड इनटू दिस के हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल इक्विप्ड लैब्स हैं यहाँ पे। वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, दे हैव डन देयर PhDs, एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, और जिस तरीके से वो बच्चों को अपना जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, मैं समझती हूं कि हम यहां बहुत मेहनत से बच्चों को ये सारा काम करवा रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर रिसर्च की बात की जाए, तो हर एक सुपरवाइज़र बच्चों के लिए फुल टाइम अवेलेबल है। वी हैव डिस्प्लेड द टाइम टेबल, जिसके अंदर हमने अपने प्रॉपर रिसर्च आवर्स रखे हुए हैं, और उसके अलावा जो फ्राइडे का दिन है वो भी कुछ ऐसे रिसर्च के लिए हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह से हम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, या एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे बहुत सारी और यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हमारे पास आते हैं MPhil के अंदर, दे हैव एक्चुअली टोल्ड अस कि जैसे BS में उन्होंने वहाँ पे क्या फैसिलिटीज इंजॉय की हैं, या उन्होंने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारे BS लेवल के ऊपर भी हम बच्चों को जो प्रोजेक्ट कराते हैं तो प्रॉपर थीसिस लिखते हैं वो, और प्रॉपर रिसर्च करते हैं। जबकि बाकी जगहों से आने वाले बच्चों के से हमें ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला है कि वो वहाँ पे BS लेवल पे उनको प्रॉपर प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं या नहीं, या उनका कोई रिसर्च का एक्सपोजर है या नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट और आई वुड रिकमेंड कि अगर BS जूलॉजी जी करना है तो फिर आप यूसीपी ही आएं, बिकॉज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज आर हेयर और स्पेसिफिकली जितने हमारे सारे एक्सपीरियंस किस्म के टीचर्स हैं यहाँ पे, वो बहुत केयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स की और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक्सेल करें अपनी फील्ड के अंदर और जब ये बाहर निकलें तो प्राउडली दे कैन प्रेजेंट देमसेल्व्स एज यूसीपीएन और वो बता सकें कि हमने ये चीज़ लर्न की है यहाँ से और कितने अच्छे तरीके से लर्न की है. सो दिस इज बेसिकली द थिंग.
1: मैं निमरा अफजल आपसे यही सवाल, लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल सवाल भी आप ही इख्तिताम करूंगा आज के प्रोग्राम का. पहला सवाल तो यही, व्हाई सो स्पेशल इन योर डिपार्टमेंट दैट it should be the first choice of all the incoming students, right? And second, you are also holding the portfolio of the research journal of FOST. It just struck my mind. So, usi pe ikhtitam kijiyega. 2-3 minutes aapke paas hai.
4: Ji sir, bahut shukriya. Sir, performance is always evaluated by the indicators, right? So, sirf jaise madam ne aapko bataya ki teaching and research excellence, to uske main aapko kuch indicators apne success point bata deti hu. So, in our BS program, jo bachche hamare research karke yahan se pass out hote hain, they have a number of research publications. Aap ye kahin pe nahi dekhenge ki government universities pe bachche research publications karte hain BS level pe. So I have a complete proof that our BS students are publishing their research in high impact factor journals. So one of my student has actually published almost 20 papers at the level of BS. हाँ, ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना इंटरेस्टेड है, लेकिन वी प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू आर कैपेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द साइंस. सो जैसे मैंने आपको कहा कि वी डू साइंस, सो वी पब्लिश साइंस. यस एग्जैक्टली. सो दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर. सेकेंड इंडिकेटर इज़ कि हमारे BS के स्टूडेंट्स, मोर देन 15 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फॉर द इंडोनेशियन यूनिवर्सिटीज फॉर MPhil. This is another success point. So where we are imparting a knowledge, where we are preparing the students for the international competition for the scholarships and everything like that. So our students are also, you know, work studying currently for the master's program in international universities. The third point is we have a faculty that is comparatively young enough and are actually working in the field too, because they have the hunger of success, right? So they are working, they have that motivation to work. And then the students become the, you know, driving power for them, and they work together to make an impact.
1: You very rightly said you are working your heart out.
4: Yes.
1: For them. So the last part, that is the journal.
4: जी. So sir, मैं managing editor भी हूँ अपने हमारे faculty of science and technology का journal है UCPJST, journal of science and technology, that is currently holding the status of Y category. HEC approved है, Y category में है, and we started in it in 2022, and now we are looking forward for the X category, and in that particular journal हम लोग different जो बेसिक साइंसेज हैं और अप्लाइड साइंसेज हैं उनको लेके चलते हैं. दिस जर्नल इज ऑल्सो इन कलेबोरेशन विद द फैकल्टी ऑफ फार्मेसी. सो ये दो फैकल्टीज जो हैं, दे आर वर्किंग हार्ड ऑन द साइंसेज टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग. एंड ये जर्नल जो है, यहाँ पे हम पब्लिश करते हैं स्टूडेंट्स के उस काम को जो कि इनोवेटिव है एंड येट प्रैक्टिकल है. सो आई इन्वाइट फ्रॉम द फॉरम ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्लीज पुट योर पेपर forward for your research publications if you want to publish it in a Y category approved journal, so that specifically sir BS ke bachche jo chote project karte hain yet impactful hain, they can contribute to the journal. You are always welcome to contribute.
1: Bahut badi baat hai, very exhaustive explanation given by you. Thank you so very much all of you, Dr. Shazia Imtiaz Nagra, Dr. Namra Afzal, ya Nimra Afzal mujhe maaf kar dijiyega talaffuz mein agar galti ho kotahi ho, और डॉक्टर दिलावर हुसैन. बहुत उम्दा गुफ्तगु रही. मुझे ये मानने में कोई बाक नहीं है, कोई आर नहीं है कि मैं आज ये छठा प्रोग्राम कर रहा हूँ. मेरे ख्याल में ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड एनलाइटनिंग डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. इसी के साथ सामी हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं. कहीं मत जाइएगा, अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिएगा. आखिर में हमेशा पाकिस्तान.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111178 पर राब्ता कीजिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyawad.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।